0: FM 100's time check. It's 7 a.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं, दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कानूनों की पाबंदी कीजिए।
2: FM 247365
3: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
5: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 247/365

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: सर्च सर्व नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर्च सर्व पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर्च सर्व हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर्च सर्व नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111-1-7837।
6: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं, जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं। इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। रजिस्टर नाउ एट cyberhackathon.pk।
8: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
9: पाकिस्तान इज बिल्डिंग अ सेफर स्मार्टर डिजिटल इकोसिस्टम एंड वी नीड योर टैलेंट। Step up, build a cyber safe life and unlock premier careers in cyber security at the 5th Digital Pakistan Cyber Security Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
10: Pakistan ki zyadatar zameenein phosphorus ki kami ka shikar hain. इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
11: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
0: This program is brought to you by
12: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
4: and Sir Sub's Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
13: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjo hon, aise online apps aur platforms se ijtinab kare jo paison ke ivaz kisi namaloom shakhs ka saman aapke apne saman ke sath le jane ke liye karte hain. ये आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات درآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
14: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
15: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
16: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
17: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
18: ہماری ذمہ داری ہے.
19: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
14: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
20: FM 100
21: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
22: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
4: सर सर, नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजे, या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
7: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
8: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
9: Pakistan is building a safer, smarter digital ecosystem, and we need your talent. Step up, build a cyber-safe life, and unlock premier careers in cybersecurity at the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
10: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
11: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
12: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
13: This program is brought to you by
14: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
4: And Sir Sub's Nitro Force ko laga aur jeet taja.
13: Like us on facebook.com/FM247365.
15: FM247365.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: Step School से foundation हो strong. Step Schools दे रहा है modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
0: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.

0: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: This program is brought to you by Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja, and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja. Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke sath sath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi, firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi, dehshatgardi ki targhib se mutalliq kisi bhi tarah ka mawad phailana, electronic jalsazi, spamming, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्म इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
2: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
5: हमने आप लाखों से तीन बार मौत देखी।
6: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
7: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया।
4: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
8: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा।
4: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का कयाम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100
1: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365।
9: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
11: कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
10: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
9: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हूँ।
11: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
10: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
11: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
9: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
10: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
9: आइए वेट से आगे का सोचें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
7: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
0: This program is brought to you by
8: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
0: and Sarsaps Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
9: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
10: FM 247365.
11: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? चौबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और चौबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जस्ट कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जस्ट कैश है ना।
7: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
8: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।
9: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
10: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 100। facebook.com/fm247365

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: Step School से foundation हो strong. Step Schools दे रहा है modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 03111117837.
5: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.

0: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: This program is brought to you by
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
1: and Sarsab Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
3: Khawateen o hazrat, manshiyat wo zeher qatil hai jiski sanjeedgi ka ehsaas insaan ko tab hota hai jab ki zeher hamari ragon mein zahir kar chuka hota hai. वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है. मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है, जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है. घर देर से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है. खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखें ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके. हमारा आसिम एक गांव एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान.
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 247365

0: 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैज़ कैश ऐप नाउ।
3: किसने कहा था पैसे बचा,
4: फिनिक्स लगा और भूल जा।
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान।

0: खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: Your location for maximum music.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद,
2: हुकूमत सिंध।
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।

0: 45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर।
3: मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया।

0: से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया।
2: कहीं भी पानी जमा न होने दें, पानी की टंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाव, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से
4: नजदीक या मखसूस USSD को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, PTA टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो OTP शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है, तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के इसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए PTA के टोल फ्री नंबर 0800-55055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
5: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
6: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: अहमद हटो वहाँ से।
1: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: खवातीन और बच्चों के हकूक का एहतराम हम सब की जिम्मेदारी। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अब हुकूमत पाकिस्तान
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
6: Let's celebrate
3: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: चौरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ

0: पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: Yeh paigham Hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेरे इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मंसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नात्रा से रुजू करें और इस

0: all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की सूखे से मुताबिक किसी भी मसले के हल के लिए नात्रा से रुजू करें और इस 2, 4, 7, 3, 6, 5.

0: चैटर चीज ले लीजिएगा, उसको कद्दूकश कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें एक चाय का चम्मच ओरिगानो, एक खाने का चम्मच लहसुन, एक चाय का चम्मच कुटी मिर्च लाल वाली, एक चाय का चम्मच काली मिर्च, एक खाने का चम्मच सोया सॉस डाल देना, ठीक है। ये तमाम चीजों के साथ आपने थोड़ा सा हरा धनिया और एक प्याज भी चॉप करके डालना, तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर ली, अब आपने क्या करना है, एक आप रोटी बनाएगा, रोटी बनाने के बाद अब आपने एक साइड पे आपने चिकन की फिलिंग करनी है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, थोड़ी सी चीज और डाल दीजिएगा अंदर। अब इसको टर्न कर लीजिएगा, जिस तरह से मून का शेप, चांद का शेप होता है ना, उस तरह से आपने इसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद अब आप क्या कीजिएगा, साइडों को, इसको किनारों को आपने हाथ से अच्छी तरह से बिल्कुल मोड़ते जाना है, ताकि वो उसकी अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाए। अच्छी तरह से आपने चारों तरफ से इसको आपने मोड़ लेना है। अब आपने पैन के अंदर ऑयल या बटर डालना है और अब इसको पराठे को डाल देना है। हल्की आग पे आपने इसको सेकना है, पहले एक साइड से सेकिएगा, फिर आपने दूसरी साइड पे इसको सेक देना। बेहतरीन किस्म का चिकन चीज पराठा जो है तैयार हो जाएगा। एक तो हम इस तरह से भी बनाते हैं, एक होता है कि पूरा राउंड जैसे आलू के पराठे की तरह होता है, एक ही होता है कि आप इसको बेक भी कर सकते हैं। आप पराठा पूरा रेडी करें, उसके ऊपर चीज डालें, थोड़ा सा आपने ओरिगानो मशरूम वगैरह जो भी आपने डालना है, अगर पिज्जा आपको फ्लेवर चाहिए तो हल्का सा आप ग्रिल कर लीजिएगा, तो इस तरह से चिकन चीज पराठा जो है रेडी हो जाएगा।
1: ऑलराइट, तो चिकन चीज पराठा किस तरह रेडी होता है रदा ने आपको बता दिया, और ये बहुत मजे का लगता है। ये मेरे ख्याल से अब आजकल जो है वो लोगों के नाश्ते का बड़ा फेवरेट बन चुका है, कि जिस दिन मेरे ख्याल से वीकेंड पे होगा चिकन चीज पराठा की मैं पराठा बना लिया जाए तो मजे की रेसिपी।
0: आजकल बच्चों को, मतलब मैं खुद भी इस चीज के लिए कहूंगी कि आप इस तरह की चीजें बनाकर दें, इसलिए कि आजकल इतनी बच्चों को ये फैसिलिटी मिल गई है, जो आप कॉल करते हैं तो आप ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि आप घर में बनाएं और उनको टाइम पे बनाकर दे दें। जब रात को बच्चे भूखे होते हैं ना, उनको भूख लगती है, तो यही काम करते हैं। यही चीजें अगर आप घर में बनाकर रख देंगे, बच्चे खा लेंगे। हाँ, कभी कभी होता है, कभी कभी ऑर्डर कर लें, लेकिन ये ज्यादातर मैंने देखा है कि ये एक फैशन चल पड़ा है कि बस ऑर्डर किया और रात को मंगा के वो लोग खा रहे थे। फिर देखो बीमार कितने होते हैं बच्चे।
1: सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बाहर के खाने की आदत तो हर किसी को ही पड़ी हुई है, और हमें बड़ा कन्वीनियंट लगता है कि अच्छा अरदा, आप इसके पीछे ये मसला भी तो हो गया ना कि गैस नहीं होती।
0: गैस का भी मसला है, मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि टाइम से पहले आप पका के रख लिया करें, माइक्रोवेव कर लिया करें, गरम कर लिया करें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं माइक्रोवेव नुकसान देता है। अब आप जब बाहर की इतनी खराब चीजें खाने तो वो आपको नुकसान नहीं देता। मैंने एक दो रेसिपी, मैंने रोटी का कहा था कि रोटियां बच जाती हैं, तो उसको आप लोगों के बहुत सारे नीचे कमेंट्स आए, हाँ माइक्रोवेव तो ये माइक्रोवेव

0: अदरक लहसुन ये डाल के चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स कर, वो टमाटर आपने डालने हैं, डाल के इसके अंदर एक चाय का चम्मच आपने ओरिगानो भी डाल देना, आधी चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला भी डालना। अब इसको आपने पकाना है, जब आपको लगे गाढ़ा हो गया, अब आपने चूल्हा बंद करके इसके अंदर आपने डालना है थोड़ा सा टोमेटो केचप, मजेदार आपकी पिज्जा सॉस तैयार हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, जो रोटी बना के रखी है उसके ऊपर आपने पिज्जा सॉस डालनी है, ऊपर चिकन डालना है, सब्जियां डालनी है, उसके ऊपर आपने चीज डालकर थोड़ा सा ओरिगानो छिड़क देना। सिल्वर का पतीला ले लीजिएगा बड़ा वाला, उसके अंदर एक स्टैंड रख लीजिएगा लोहे वाला, और अब आपने क्या करना है, स्टैंड के ऊपर आपने पिज्जा वाली ट्रे रख, आपने क्या करना है, इसको आपने ऑयल गरम करके जिस तरह से पूरी फ्राई करते ना फ्राई करके निकाल लीजिएगा, उसके बाद ऊपर टॉपिंग कीजिएगा, चीज को अलग से मेल्ट करके ऊपर से चीज डाल देना, थोड़ी देर के बाद वो खुद ही सेट हो, चीज डाल देना, बाकी सारी चीजें डाल देना, तो इस तरह से भी आप फ्राई करके भी आप बना सकते हैं पिज्जा। कभी कभी मैं इस तरह से भी कर देती हूँ बच्चों को।
1: जबरदस्त भाई, आप रदा ने आपको एक पिज्जा की बहुत सारी रेसिपीज बताई हैं कि जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, तो जबरदस्त हो गया। पिज्जा भी आजकल मोस्ट फेवरेट तरीन चीजों में से एक है, बिकॉज पिज्जा लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और इसे कैसे बनाया जाता है ये भी हमने आपको बता दें। अच्छा, आज नेशनल लेमन जूस डे मनाया जा रहा है। अच्छा लगता है लेमन जूस?
0: लेमन जूस पसंद है, जाहिर है इसमें विटामिन सी होता है, लेकिन वो मेरे गले की वजह से ना
1: ये तो है, ये बात तो सही है, लेकिन ये है कि नींबू हर चीज में डल भी जाता है ना, मतलब
0: इस्तेमाल कर लेते हैं बहुत सारी चीजों में,
1: और सेटिस्फेक्शन लगती है,
0: और ये एक नेचुरल है। अब सिरके को हम लेते हैं, सिरके के अंदर तो असली सिरका तो होता नहीं, वो लोग भी उसमें भी कुछ डाल के केमिकल डाल के बनाते हैं, तो ये है कि एक नेचुरल चीज है और बहुत फायदेमंद भी है, बहुत सारी चीजों के लिए भी बहुत अच्छा है। और वैसे मैंने आज ही एक रेसिपी देखी थी, उस पर तो उन्होंने कहा था कि जैसे गला खराब हो तो उसको नींबू को जला के उसको उसका रस निकाल के उसका शहद डाल के, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखूंगी, मैंने देखा था।
1: बिल्कुल सही रहता, आप ये देखिए कहता है कि नींबू की बात जब आए तो खट्टा लगता है, और हम ये सोचते हैं, तो अक्सर जब मेरा भी गला खराब होता है तो मानिया जो काम करती है वो आके कहती है इसको गर्म पानी में नींबू डाल के दें, इससे गला खुलेगा
0: बिल्कुल,
1: कहते हैं वो कट जा, मतलब बड़ा अच्छा रहता है, वो नजले को काट देता है। मैंने कहा अच्छा भाई, वरना हम नींबू इसलिए अवॉइड करते हैं
0: खटास
1: की वजह से, वो यहीं पर आपके लिए फायदेमंद भी होती है। तो बस ये आपने कभी ट्राई नहीं किया लगा?
0: मैंने कहा मैं ट्राई करूंगा, हाँ। जला के पूरा उसका रस निकाल के उसमें थोड़ा सा शहद काला नमक वगैरह डाल के, तो मैंने कहा मैं ट्राई करूंगी, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: ये अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे बस नींबू में ये बड़ा अच्छा लगता है, वो जो बड़े रसीले नींबू जब आ जाते हैं ना उसको निचोड़ने में बड़ा मजा आता है, एक सेटिस्फेक्शन लगती है बिल्कुल।
0: अच्छा आपने देखा होगा जो बड़े

0: बिल्कुल सही रहता। आप ये देखिए कहता है कि नींबू की बात जब आए तो खट्टा लगता है और हम ये सोचते हैं, तो अक्सर जब मेरा भी गला खराब होता है तो मानिया जो काम करती हैं वो आके कहती हैं इसको गर्म पानी में नींबू डाल के दें, इससे गला खुलेगा।
1: बिल्कुल
0: कहते हैं वो कट जा, मतलब बड़ा अच्छा रहता है, वो नजले को काट देता है। मैंने कहा अच्छा भाई, वरना हम नींबू इसलिए अवॉइड करते हैं
1: खटास
0: की वजह से, वो यहीं पर आपके लिए फायदेमंद भी होती है। तो बस ये आपने कभी ट्राई नहीं किया लगा?
1: मैंने कहा मैं ट्राई करूंगा, जला के पूरा उसका रस निकाल के उसमें थोड़ा सा शहद काला नमक वगैरह डाल के, तो मैंने कहा मैं ट्राई करूंगी, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: ये अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे बस नींबू में ये बड़ा अच्छा लगता है, वो जो बड़े रसीले नींबू जब आ जाते हैं ना उसको निचोड़ने में बड़ा मजा आता है, एक सेटिस्फेक्शन लगती है बिल्कुल।
1: अच्छा आपने देखा होगा जो बड़े वाले
2: दूध दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा, वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें, हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार, मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

ठीक है, टोमेटो केचप जैसे आपने लेना चार खाने के चम्मच। अब चार खाने के चम्मच टोमेटो केचप, उसमें एक चाय का चम्मच भुना हुआ जीरा, तीन से चार गोल वाली मिर्च।

0: us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365.
0: 31 years of memories, milestone, and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
1: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
2: Keep it locked to 100 FM.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
4: लंच टाइम अपने कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी।
5: अपनी कमाई से

0: at 0311 111 7837.
1: Like us on facebook.com/FM247365. ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
2: FM 100
1: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
1: FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात.

0: FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
1: 100 FM।
2: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आ

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मज़ीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद्दे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
5: Back to back, back to back. Only music, no art to talk.
6: Only music, no art to talk.
5: This is FM 100.
7: Come on.

0: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: 100 FM।
3: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे।

0: सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
1: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं, इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। रजिस्टर नाउ एट cyberhackathon.pk।

0: करें अपने करीबी HBL ब्रांच, HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: सर नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 03003641 पर भेजें या सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: पाकिस्तान इज बिल्डिंग अ सेफर स्मार्टर डिजिटल इकोसिस्टम एंड वी नीड योर टैलेंट। Step up, build a cyber safe life and unlock premier careers in cyber security at the 5th Digital Pakistan Cyber Security Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
2: 100 FM.
3: Chum chum chum, kitab leke nikle hum. अम्मी ने कहा ना रुकना तुम रोज रोज आ

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे। होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
3: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
5: Evening 5 time.

0: at 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
2: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
5: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
0: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
6: बैन अल-अक्वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसे ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन उस जुर्म की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: FM 24/7/365

0: FM 100 आपका अपना रेडियो स्टेशन.
1: FM 100's टाइम चेक. इट्स 9 PM.
2: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
3: तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना?
4: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
5: बैनुल अक्वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है. मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं. याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे. खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है.
8: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है.
9: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
10: हमारी जिम्मेदारी है.
11: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें.
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
1: Us on facebook.com/fm247365.
12: FM 247365.
13: Let's celebrate
14: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
12: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

Mike check 1 2 3. Assalamu alaikum and assalamu alaikum Pakistan. Sabhi sunne walon ko ayaz ahmed ki janib se aadab. Kya haal hai, kaise mizaj hai, kaisi tabiyat hai? Umeed karta hu maze mein honge, theek thaak honge. Sun rahe apna favorite radio channel FM 100. Aur janab mera aur aapka saath rehta hai raat 9 baje se lekar aur 11 baje tak. क्या बातचीत करनी होती है, ये तो मैं खुद यहाँ सीट पे आता हूँ और आप लोगों से ही मैं सीखता रहता हूँ। जो दिल में आए वो आप कहें। मैसेज करने का बहुत सिंपल तरीका है, जो पहली दफा सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं, वैसे तो जो सुनते रहते हैं उनको पता ही है। KHI स्पेस टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर। बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बैलेंस नहीं है और फिर मैसेज करेंगे तो नहीं आएगा। जनाब आज है फ्राइडे और फ्राइडे वाले दिन मैं जरा पॉप गाने, पाकिस्तानी पॉप गाने, वो मैं आपको सुनाता हूं, अपने वक्त के हिट गाने 90s के, अर्ली 2000 के, थोड़ा सा जरा रिसेंट जो गाने हैं उनसे जरा मैं थोड़ा सा दूर फ्राइडे को रहता हूं। और 90s में और अर्ली 2000 में कमाल बैंड हैं, कमाल सोलो सिंगर्स हैं, भरे पड़े हुए हिट गानों से क्यू शीट बनी हुई है हमारी। जबकि पहला आप ट्रैक सुने आपको अंदाजा हो जाएगा।

0: Friday, it's a party that won't end.
1: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ.
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी. एक समझदार माँ बनेगी. सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी. आने वाली नस्लें संवारेगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी. पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है. लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान. फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं. जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: Us on facebook.com/FM247365. FM247365.
6: Active, yummy,
7: adorable, zabardast.
6: Theek hai pyaar, to suno yaar.

जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100 आयाज अहमद के साथ। और साथ साथ जनाब मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर, अपने बारे में लिखें और कुछ। बिलावल भाई के जो है ना, सबसे पहले मुझे मैसेज नजर आ गया है, कहना सुम्बल जी को भी, कादिर भाई को भी और तमाम प्यारे लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। सर उम्मीद है आप फिट फाट और ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई। बिलावल भाई क्या सूरत यार, काफी सारे खिलाड़ी जो थे पाकिस्तान के आउट हो गए थे, टेस्ट मैच चल रहा जनाब दूसरा, अफसोस हो रहा है यार पाकिस्तानी बैटिंग को क्या होगी, इतनी बुरी परफॉर्मेंस। हालांकि बॉलर्स ने अच्छा किया, 290 पे इंग्लैंड की पूरी टीम को आउट कर दिया, लेकिन जब तक मैंने देख रहा था, लो जी 110 पे सारे तो नहीं आउट हो गए, जी जनाब 110 पे सारे आउट हो गए और 23 पे दो इंग्लैंड के भी आउट हो गए। लेकिन भाई जब इतनी मुश्किल पिच है तो ये भी आप समझें 203 की लीड हासिल कर ली है इंग्लैंड ने, तो इसका मतलब हारने के लिए ये टेस्ट भी तैयार है। क्या हो गया क्रिकेट को यार, कोई चीज भी ठीक से नहीं हो रही। इस पे बहस करेंगे, बात करेंगे थोड़ी सी। बिलावल कह रहे हैं सर पहला सॉन्ग माशाल्लाह। बिलावल बहुत शुक्रिया। सलाम कैसे हैं आप, सबको सलाम। जरी नूर वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब मिसेस फारूक भी आ गई, मिसेस फारूक तबीयत कैसी है आपकी, वालेकुम सलाम। और इसके अलावा जनाब बहुत सारी दुआएं आपने भेज दी है, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। और संजीदा जी क्या हाल है आपके, और बड़े प्यारे से अल्फाज में आपने वेलकम कर दिया है। कल का शो बहुत बेहतरीन था, थोड़ी थोड़ी सी रुकावट भी थी मगर कामयाब। चले कोई बात नहीं, रुकावटें तो जिंदगी में चलती रहती हैं, और पाकिस्तान में हो और रुकावटें ना हो ऐसा कैसे हो सकता। पाकिस्तान का वैसे तो पूरी दुनिया का ही अजीब सा ही हाल है, लेकिन यहां थोड़ा जरा ज्यादा हो गया और काफी चीजें खतरनाक हो गई। चले जनाब बातचीत रहेगी, लेकिन क्योंकि जरा 90s के दौर की बातें चल रही हैं और फिर 90s का जिक्र हो और वाटिल सान आप भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता भाई।

0: जनाब, वेलकम बैक। सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं के चाय स्पेस। टेक्स्ट करेंगे, सेंड कर देंगे 3636 पर। अच्छा जी, गयासुद्दीन बलबन मुल्तान से हमें सुन रहे हैं। गयास भाई वालेकुम सलाम, और जनाब पूरी टीम को भी सलाम कह दिया, सबकी जानिब से वालेकुम सलाम। हुमा सिद्दीकी आ गई भाई। हुमा जी वालेकुम सलाम, कह रही कल आपका शो में बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, ऑनलाइन आ जाते हैं, कुछ जहां नेट का प्रॉब्लम था इस वजह से भी कोई मसले थे कुछ, तो आज माशाल्लाह बिल्कुल सही है। जैसे जब मैं ये कहता हूं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, अभी तक तो माशाल्लाह से ठीक है। और आप बताएं हुमा जी, ठीक है, खैरियत से हैं? इसके अलावा मिसेस फारूक बहुत शुक्रिया। और जनाबे वाला कहनी भाई, आपकी सच्ची बातें दिल पर लगती हैं जो आज हो रहा है। बिल्कुल संजीदा जी, मैं क्या करूं, कोशिश करता रहता हूं जितनी मैं कह सकूं, कह दूं लोगों के मसले मसाइल जो हैं उनको डिस्कस कर सकूं। अजीब अजीब हालात हैं दुनिया के भी, आप देखें नेपाल वाला, मैं यार मुझसे तो देखे नहीं जा रहे यार, इतना खतरनाक सैलाब आ गया, बड़ा ही खतरनाक भाई। लोगों को टाइम ही नहीं मिला अपने आप को बचाने के लिए, पूरे पूरे शहर, पूरा पूरा गांव जो है वो खत्म। इसीलिए कहते हैं अल्लाह ताला से बस दुआ मांगे, नागहानी से अल्लाह ताला बचाए, आमीन सुमा आमीन। और नागहानी की बात अगर हम करें तो यार पिम्स हॉस्पिटल में जो बच्चों के साथ, ये सब चीजें देख के यार बाकी दिल बहुत दुखता है यार, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा। हम सारी आवाम को ना सियासत में डाल दिया है, वो उनके खिलाफ बोले वो तुम उस पार्टी के हो, और कोई अगर कोई गलत बात कह दे नहीं तुम इस पार्टी के हो, ये इनमें लगा दिया। अब हम अपने मसले मसाइल कम और इन चीजों में ज्यादा लग गए हैं कि भाई वो फलां का है, वो फलां की फेवर में है, ये चीज हो गई है। और इसका भरपूर फायदा जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो उठा रहे हैं, आपको इसमें लगाया हुआ है। और हम लोग जनाब जो सफर कर रहे हैं, यानी जो फेस कर रहे हैं इन सारी चीजों को, वो आम आदमी है। पेट्रोल का कोई हिसाब किताब, दिन उठे आप 50 पैसे कम, अगले दिन उठे तो 100 रुपए ज्यादा, मेरे मतलब मैं तो जो गुस्से में कह गया, मेरे मतलब 5 रुपए ज्यादा, 6 रुपए ज्यादा, कम 50 पैसे। यार ये टेक्निक बड़ी प्यारी भाई, जिस जो भी बैठा हुआ इस पर पेट्रोलियम पे, जो वजीर साहब है, सलूट है सर आपको, बहुत प्यार से आप जो है ना 4 दिन कीमत बढ़ाते हैं 5-5, 6-6, 7-7 रुपए करके, और 5वें दिन बाद उनको ख्याल आता है यार कम भी तो करनी है, चलो भाई 50 पैसे। मैं कितने जावा चौधरी साहब। इसी बात पर जो है ना आवाज का ये खूबसूरत सा ट्रैक, लेकिन नहीं रुक जाए, थोड़ा सा आवाज का गाना मैं थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा, क्योंकि टाइम हो गया है आपको 3 मिनट की ब्रेक सुनाने का।
1: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना, अभी जास्ट कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जास्ट कैश है ना।
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे, बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
4: 100 FM।

छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100। और जनाब मैं आपको ट्रैक सुना रहा था आवाज बैंड का, जाने कौन थी हसीना। यार बड़ा जबरदस्त ट्रैक था और पुरानी यादों में भी ले जाता है ये ट्रैक। इंजॉय करें, मैसेजेस करें 3636 पर।

हुमा जना वेलकम बैक सुन रहे एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस भी आपके पहुंच रहे हैं। हुमा जी हमें कह रही हैं भाई बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त है, थैंक यू हुमा, और इंग्लिश सॉन्ग्स की भी रिक्वेस्ट की है। ऐसे एक बड़ा सॉफ्ट गाना भी, मेरा भी बड़ा फेवरेट है अनब्रेकेबल, इसकी जगह मैं आपको ईगल्स का सुना दूं अगर आप माइंड ना करें तो। थोड़ी सी देर में भी एक दो मैसेज पढ़ लूं उसके बाद। अच्छा जी नाब अदीला कहनी, अदीला बहन कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सलाम प्यारे अयाज, कैसे हो आप? और क्यू शीट हमेशा की तरह आज भी लाजवाब, गुड शो। संजीदा आप ही को सलाम उनकी जानिब से, वालेकुम सलाम। हमारी प्यारी सी बहन अदीला भी सुन रही हैं और उनका मैसेज भी हमने शामिल कर लिया। बिलावल कहने सर सॉन्ग मजेदार है, बड़ी मेहरबानी बॉस, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जनाब और हाय संजीदा जी, आप तो बस सारे गाने आपके लिए भाई, हसीना भी आप ही हैं। और मिसेस फारूक कह रही है लवली लवली सॉन्ग्स, थैंक यू। चले जनाब मिसेस फारूक और हुमा सिद्दीकी, आप दोनों को ये एक मेलोडियस ट्रैक ईगल्स का मैं आप दोनों को डेडिकेट करता हूं, और वो है कैसे

है जनाब, जबरदस्त ये ट्रैक है और जब भी सुने अच्छा लगता है। ईगल्स क्या कहने, ईगल्स के अच्छा जनाब। और इसके अलावा सलाम बेटा, मैं फरीदा बुरहानुद्दीन। फरीदा जी कैसी हैं आप? और मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। और ये भी थोड़ी परेशान है, यानी सब जगह तबाही चल रही है, वैसे ये तो है, क्या कह सकते हैं, लेकिन अपने मुल्क में जरा सिस्टम ठीक नहीं है, थोड़ा सा ये सही हो जाए, आपस की लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, मुल्क के पर तवज्जो हो, आम आदमी पे तवज्जो हो, तो जरा काम बनता हुआ नजर आएगा, वरना लोग बड़े परेशान हैं। बहरहाल जनाब, अच्छी उम्मीद होनी चाहिए, अच्छी होप्स होनी चाहिए, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। संजीदा जी क्या कहने आपके, संजीदा जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इतनी सारी दुआएं आप दे रही होती है ना, वाह वाह। और मिसेस फारूक, गाना कैसा लगा आपको? अपनी तरफ से बहुत मेलोडियस ट्रैक मैंने आपको सुना दिया। अच्छा जनाब, टाइम चेक नजर आ रहा मुझे, और 5 मिनट की दोस्तों ब्रेक है। सुनते रहे FM 100। अयाज अहमद के साथ दिलचारा मैसेज करने का तो बहुत सिंपल तरीका है, KHI स्पेस, टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। अच्छी अच्छी बातें, रौनक वाली बातें, पहले लोग परेशान हैं। ठीक हो गया जनाब, अब मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga
1: aur bhul ja. अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैस सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए।
7: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
6: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेरे इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मंसूखी से मुतल متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
8: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Active, yummy, durable, zabardast. Kya pyaar to suno yaar.

हमारे जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर। रमजान पठान भाई कह रहे हैं, याज भाई आपको, बिलावल, संजू और सब सुनने वालों को सलाम। क्या हाल है आपके? हाल हमारे आपके सामने, बस बेहाल होने में कुछ ही लम्हे बाकी, जो हालात चल रहे हैं। दुआ करें रमजान भाई, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो। और संजीदा जी के मैसेज पहुंच रहे हैं, क्या कहने संजीदा जी। मिसेज गफार का भी मैसेज उन्होंने मुझे फॉरवर्ड कर दिया है, और उसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कह रही है कि हेलो संगीता, माई लव, हाउ आर यू। और भाई उनको सलाम दुआ कर दी उन्होंने। और इसके अलावा गिव माई लव टू अयाज, आई एम एंजॉइंग दिस शो, गिव माई लव टू हिम, थैंक यू संजीदा। मेरे ख्याल से बहुत शुक्रिया मिस गफार, आप सुन रही हैं। तबीयत कैसी है आपकी? उम्मीद करता हूं ठीक होंगी। और बहुत शुक्रिया आपके मोहब्बत, आपके प्यार का। अच्छा जनाब सुंदर समय सुन रही है भाई। सुंदर क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं। सुंदर जी के लिए भी गाना मैंने जबरदस्त सा अभी आपको मैं डेडिकेट करता हूँ, जरा सा इंतजार। और मिसेस फारूक कह रही है ऑसम गाना पसंद आ गया, खुश रहें सलामत रहें, बहुत शुक्रिया आपका। और अयाज एंड हुमा सिद्दीकी का भी थैंक यू, हम दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। हुमा की जानिब से भी मोस्ट वेलकम आ गया है। और हुमा जी को गाना पसंद आया भाई, ईगल्स हम सबका बड़ा फेवरेट बैंड है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और भी एक दो ट्रैक्स हैं, थोड़ी सी देर में मैं प्ले करता हूं। अच्छा भाई नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं, और ये गाना डेडिकेट कर देते हैं सुंदर जी आपको। और वो है कैसे,

0: best of 90s, 80s, and today with Ayaz Ahmad.
1: Now welcome back to FM 100 aur saath saath messages 3636 par Ayaz bhai super duper show sahab zyada bhai badi meharbani bahut shukriya aur Mrs. Farooq keh rahi hai beautiful song kya baat hai janab waise ek baat hai gana bada zabardast banaya jawab bhai bas main aapke liye dua kar sakta hu isi taraf rehte to kitna acha tha Bilawal keh rahe sir Namibia ne South Africa ki strong team ko hara diya are baki Namibia 163 920 overs mein acha ji 145 920 अरे क्या बात है यार वैसे कमाल कर दिया एक तरह फेमस खिलाड़ी था जो पीएसएल खेलने आते थे वो आई थिंक वो नामीबिया में था नाम मैं उनका पूछ रहा हूँ बहरहाल अच्छी जैसे 2020 में किसी का भी तुक्का लग सकता है जिस दिन टीम अच्छी खेल रही हो जाता है लेकिन बेटा ये पाकिस्तानी टीम का बता मेरा बेटा ये क्या होगा कब ठीक होगी हमारी पाकिस्तान की टीम कुछ समझ नहीं आ रहा मुल्क तो चलो जो चल रहा है ऐसा चल रहा है पाकिस्तानी टीम का समझ लिया ऊपर से गोरे वो भी शुरू हो गया माइकल थर्टन को देखे वो अब कह रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है भाई उसका इलाज तो सही करा ले इमरान खान का बेटे आगे वो भी इंटरव्यू दे रहे हैं और पीसीबी वाले इनका इंटरव्यू आया तो हम भाई टीम नहीं उतारे यार ये देखो ये बोर्ड को ये बातें कहनी चाहिए मतलब आप तो उनको साबित कर रहे हैं कि इसका मतलब जो वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कौन समझा मैं होता तो समझाता भाई चलने दो यार जो चीजें क्या कहते हैं आप नदीम भाई थी ग्रेट प्यारे हमारे हर चीज का एक तहम्मुल सबर वकार कोई भी अगर आप जब बड़ी पोस्ट पे आते हैं तो एक डिग्निटी होती है तो ऐसा लग रहा है पप्पू मामे जैसे उन्हें फड्डा हो जाता बस वो वाली कहानी चल रही क्यों भाई क्यों नहीं हम नहीं आने देंगे कैसे समझाऊं मैं इनको यार लड़ाई में भी तरीका होता है सुकून होता है लड़ाई भी सिखानी पड़ेगी नदीम भाई मुख्तसर करते हैं और अगले ट्रैक की जाने पड़ते हैं सुंदर जी बहुत शुक्रिया गाना पसंद आ गया अच्छा जी एक और बड़ा जबरदस्त गाना रिजवानुल हक याद आ गए तेरी गली जाना है गली ढूंढ रहे हैं कौन सी उस वक्त लोकेशन का सिस्टम नहीं होता था ना तो ये गाने बड़े हिट थे

0: FM 100's time check. It's 10 PM.
1: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना?
2: FM247365
3: FM 100
4: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
5: एक्टिव यमी
6: जॉर्डन जबरदस्त।
5: प्यास तो सुनो यार।

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और जनाब मैसेजेस के सिलसिले जारी हैं। सन्नाटा को रंगी से सन्नाटा कितना है सन्नाटा भैया, अयाज भाई आपको और सब सुनने वालों को सलाम भाई, असली नाम लिखो, बाकी अगर असली नाम है तो भाई घर वाले भी पूछते हैं कौन हुआ सन्नाटा हुआ, कैसे घर वालों ने अगर नाम रखा भाई चेंज करो यार कोई अच्छा अच्छा खुशनुमा नाम रखे वरना जिंदगी पे नाम का असर पड़ता है, मैंने सुना है। बहरा जनाब और मिसेस फारूक बहुत शुक्रिया, यानी भाई अमेजिंग प्लेलिस्ट और आज शो में बहुत मजा आ रहा है, बाकी में ये आज क्यों आ रहा है, पहले क्यों नहीं आ रहा था दसो मैनू मिसेस फारूक। अच्छा जनाब संजीदा जी ने भी वाह वाह क्या बात है, कह रहे हैं कि बताकर गली सजानी होगी, प्लॉट खाली नहीं है वरना बंगला बन जाता। हाँ ये बात सही की शहजादे, इतने शानदार सॉन्ग सच्ची बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जनाब अब सिर्फ एक घंटा रह गया, टाइम बड़ी स्पीड से गुजरता है, अभी इंग्लिश गाने इतने सारे रखे हुए और उर्दू में ज्यादा जरा सुनाता हूँ क्योंकि ज्यादा शौकीन जो लोग हैं वो उर्दू गाने सुनने के हैं। तो जनाब बड़े दिनों बाद क्यू शीट में शामिल किया, अली हैदर भाई दिख रहे पुरानी जीन्स और गिटार।

0: Volume with Ayaz Ahmed, 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end. Oh, so loud.
1: जी क्या बात है जनाब, ये गाने सुनते हैं आप बाकी पुराने उस 90s के दौर में चले जाते हैं या अर्ली 2000 के दौर में चले जाते हैं। बिलावल कहने सर क्या आज भी लोग सन्नाटा जैसे नाम रखते हैं? अच्छा संजीदा जी बतानी अब्दुल्ला सन्नाटा, हाँ अब्दुल्ला भाई आते थे पहले वो। चले जनाब अगर वो है भाई अब्दुल्ला कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा सन्नाटा क्यों लगा दिया मेरे भाई। और इसके अलावा बिलावल और भी कहना है सर हमारे बैटर से तो इंग्लैंड के टेल एंडर ने अच्छी बैटिंग। यार टेल एंडर की अगर बात करोगे तो वो श्रीलंका के टेल एंडर्स भी कमाल, और एक प्लेयर उसका सुनाली पता नहीं सुनाल क्या नाम था उस बंदे का, यार अगर मुझे लिखना बिलावल नाम भूल रहा हूँ मैं श्रीलंकन प्लेयर का, उसने भाई 3 सेंचुरियां और 80 रन 4 इनिंग्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस भाई, और मैच ड्रॉ करा दिया, तो उनके टेल एंडर्स भी बड़ा अच्छा खेल रहे। अब देखो पाकिस्तान अब क्या कर? मैं क्या करूं, बस अच्छी उम्मीदें रख सकते हैं और तो कुछ नहीं। मिसेस फारूक का कहने गाने पसंद आने के ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग, और कह रही भाई एक्चुअली ये सॉन्ग सुनते ही एक अजीब सी खुशी होती है, वो टाइम याद आता है। बिल्कुल यही मैं अर्ज कर रहा था कि आप उस दौर में उस वक्त को याद कर रहे होते हैं, और मुझे अच्छी तरह याद है स्कूल ऑफ आर्ट्स में जब मैं पढ़ता था तो पुरानी जीन्स और गिटार इसके कुछ शॉट्स जो वो कॉलेज के नहीं दिखा रहे, वो सिगरेट पीते हुए और स्कल्पचर भी एक दिखा रहे हैं, वो जो था वो स्कूल ऑफ आर्ट्स कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स में वो शूट हुआ था, राबिया जुबैरी उनका वो स्कल्पचर था। क्या वक्त याद दिला दिया है भाई, क्या वक्त याद दिला दिया। और एक ये बैकग्राउंड सुने आप, ये भी आपको डेस्परेडो यादों की मूवी

अच्छा ये बड़ा पुराना गाना है, इसको मिसेस फारूक कह रही है कि सज्जाद अली बेहतरीन, सज्जाद अली तो है बेहतरीन, लेकिन ये सज्जाद अली ने नहीं गाया, ये है उनके भाई लकी अली। आवाज बहुत मिलती है वैसे मिसेस फारूक, आपकी भी गलती नहीं है। और मेरे प्यारे से फूफा भी मुझे सुन रहे हैं, फूफा लव यू, खुश रहे आप। अब्दुल्ला सन्नाटा कह रहे हैं संजीदा बहन ने बिल्कुल सही बोला, सन्नाटा कैसे हो संजीदा जी, क्या लाइट चली गई संजीदा, कोई मसला नहीं है, लाइट आते ही आपने मैसेज करने। अच्छा जनाब एक और जबरदस्त ट्रैक, अपने वक्त का हिट गाना लेकिन जरा नए स्टाइल से, माइकल जैक्सन को कैसे भूल सकते हैं, ये माइकल जैक्सन नहीं है गाना लेकिन उनका है, थोड़ा सा सुनाता हूं, चेक करें आप।

जनाब बिली जीन और सुन रहे हैं FM 100। रुबाब जी मैसेज कर रही है, रुबाब जी कह रहे हैं पहला जो सॉन्ग था वो बड़ा जबरदस्त था, अब तो प्रोग्राम एंड की तरफ जा रहा है, चले लेट मैसेज करने का भी शुक्रिया। मैं भी तो हूँ रुबाब, रुबाब जी मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब एक और जबरदस्त ट्रैक और आवाज है हमारा अरशद की।

हुए जनाब, सुन रहे हैं आप अयाज अहमद का FM 100 पर। और कैरी मैसेज किया था लेकिन आपने पढ़ा नहीं। अयाज, अब आप मुझे लिफ्ट नहीं कराते, पूरी लिफ्ट आपके लिए भाई। साहब ज्यादा भाई, आपका भी मैसेज आ गया। लिखा क्या है? शी सेज आई एम अ वन, यस शी इज राइट। गाने के बोल हैं, आपको किसी ने कहा है? साहब ज्यादा की इसके पीछे स्टोरी क्या है, मैंने तो दसो। अच्छा जनाब, बिलावल कहने सर आज का शो जबरदस्त। अभी आज क्या मतलब, बिलावल नहीं करता इतनी मेहनत से, हम रोज शो करता हूँ। बिलावल को आज ही का शो अच्छा लग रहा है। भाई जनाब सुन रहे हैं FM 100। और कुछ सेकंड की ब्रेक भी नजर आ रही है, ब्रेक पर जाते हैं और आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, खेल चाहे स्पेस टेक्स करेंगे, सेंड करेंगे 3636।

0: Get up. It's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show.
1: Star of the show.
0: Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday.
1: Full volume.
0: It's a party that won't end. On FM 100, turn it up. Let the music begin.
1: FM 100's where the vibes are proud.
2: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना?
3: FM247265
4: 247365
5: Active, yummy,
6: adorable, seven.
7: तो सुनो यार.

100 और साथ साथ मैसेजेस भी। माय फेवरेट जरीनूर, आपका मैसेज पहुंच गया। बिलावल कह रहे हैं, सर हुमैरा अरशद मेरी फेवरेट सिंगर है। वो किसकी फेवरेट नहीं है? और मिसेस फारूक एंजॉय करी, वाकई फुल वॉल्यूम में सॉन्ग सुनकर मजा आ गया, एनर्जेटिक शो हिला दिया। अरे वाकई, अब मैं काम करता हूँ, जरा एक स्लो नंबर भी शामिल करता हूँ। इतनी देर से मैं इतने फास्ट गाने आप लोगों को सुना रहा हूँ, क्या ख्याल है फिर एक जरा स्लो ट्रैक भी शामिल करते हैं? और ये मेरा बड़ा फेवरेट बैंड हुआ करता था, अब तो टूट गया, आरओ, और इनका स्पेशली ये गाना ना कहो एंड है भाई।

क्या बात है जना, खूबसूरत ट्रैक। बस इतना पुराना गाना है, आज भी सुनो तो उतना ही अच्छा लग रहा है। आरओ बैंड और फारूक की क्या खूबसूरत आवाज। बस ये बैंड भी जाया कर दिया हमने, सीरियसली। इतने अच्छे अच्छे बैंड थे, सारे अमेरिका ही शिफ्ट हो गए। अच्छा जनाब, ना कहो क्या खूबसूरत सॉन्ग है। मोहब्बत का मतलब क्या है इस सॉन्ग में क्लियर। बिल्कुल हुमा जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और जनाब रुबाब जा रही है भाई 7 को या 8 को ईरान वापस। रुबाब देख के जाना, हेलमेट पहन के जाना, वहां ड्रोन चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, जंग का सामान, कभी भी कुछ हो सकता है, ख्याल से जाना। जहां बम देखो सर नीचे कर लेना। वैसे मैं मतलब मजाक कर रहा हूं, लेकिन बेटा ख्याल से इन हालात में ना ही जाए तो अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा जनाब, हाय मिसेस फारूक के मैसेज मुस्तकिल आ रहे हैं, गाने पसंद आ रहे हैं इनको फुल, और यानी मुझे इनका यही गाना बहुत पसंद है बाकी में। वैसे इनके और भी अच्छे गाने, लेकिन आपके क्योंकि जरा स्लो गाने पसंद करती होंगी तो शायद इसलिए ये आपको अच्छा लगता है। आज ओल्ड FM 100 शिद्दत से याद आ रहा है कि उसी दौर के गाने, उस टाइम के गाने। अच्छा जी, अब जो हालात चल रहे हैं ना उसके हिसाब से भी गाना मैंने ढूंढ लिया। जो बेइंसाफी और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, गरीब आदमी बेचारा परेशान, उन सब की दिल की आवाज ये ट्रैक हो सकता है। वैसे

वाह जनाब क्या बात है जनाब, संजीदा जी बहुत शुक्रिया, फारूक बहुत शुक्रिया, और मेरी आवाज सुनो व्हाइट हाउस अमेरिका तक पहुंचा दो ट्रंप जी को, मोमा जी मैं पहुंचाता हूँ, आप फिक्र ना करें मैं डाकिया वाला काम करता हूँ। इंसाफ यही नापैद हो गया, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, उम्मीदें रखनी चाहिए अच्छी। अच्छा जनाब मैसेज कर रहे हैं 3636 पर, छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: मिशन पर। मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाकें, आइए इस खतरे के खिलाफ मुतहिद। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान। AMF का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 24/7 365
3: ये प्यार तो सुनो यार।

वाह वाह, क्या ट्रैक था ये भी। आप सुन रहे FM 100। अदीला बहन कह रही है, आज भाई ये आज का शो और सॉन्ग्स वाकई ही बहुत ही जबरदस्त। और क्या कह रही भाई, सदके में भाई की नजर जरूर उतार लीजिएगा। अरे आप है ना अदीला बहन, बहुत शुक्रिया, प्यार है आप लोगों का, मोहब्बत है। मिलावल कह रहे हैं, सर आपने डिफरेंट फ्लेवर के सॉन्ग्स रखे हैं ना आज, बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बिलावल। कोशिश हमेशा यही रहती है सॉन्ग्स डिफरेंट रहे, मजे के रहे, आप लोगों को पसंद आए, और आज मुझे लग रहा है कि पसंद आ रहे हैं। अच्छा जनाब, रुबाब कह रही है आप तो खुश होंगे होंगे, मालूम मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है आज जी, पहली बहू है जो सास की बीमारी पे इतनी परेशान। अल्लाह ऐसे सबको, सब बहुओं को ऐसे ही रखे, आमीन सुम्मा आमीन। संजीदा जी क्या बात है, इतनी लाइट भी चली गई इसके बावजूद इन्होंने शो मिस नहीं किया, ये होती है बात, सो स्वीट ऑफ यू। और इसके अलावा मिसेस फारूक को तो ये गाने, मुझे पता है इस तरह के गाने आपको बहुत पसंद है, राइट जनाब। एक और हिट गाना।

है जनाब, टाइम थोड़ा और, गाने इतने सारे। अच्छा जनाब, आप शो इतना अच्छा करते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, वरना हालत तो ऐसी है दिल बहुत उदास हो जाता है। अरे मत उदास हुआ करें, अल्लाह पे उम्मीद रखा करें। कोमल रिजी याद है कि नहीं?

जनाब क्या बात है, टाइम क्योंकि कम है तो थोड़े थोड़े सारे गाने मैं आपको सुना रहा हूँ। चीशूट में सारे गाने मौजूद थे लेकिन जरा आज पूरे प्ले होने से रह गए। यार सिक्वेंसर तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं और स्पेशली इनका ये वाला ट्रैक भी।

मैं जनाब सिक्वेंसर के बाद हदीका कियानी को कैसे भूल सकते हैं, कमाल सिंगर है ये और बहुत ही नाइस, सारे गाने अच्छे हैं। जरी नूर कह रही है आज तो मेला लूट लिया, ना करो तुम्हें मैं क्या कहते हैं गुंडा बदमाश लग रहा हूँ जो मेले लूट रहा हूँ।

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365 FM 247365

दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूं, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है फेक, उनके बारे में मेरा है टेक। I don't care what you think, what you emotion.

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो सुरमा लाके बैठी ब्यूटीफुल ट्रैक और बड़ा मशहूर ट्रैक ट्रैक का जो है टाइटल वो है मगरोला वाह वाह वाह मगरू वैसे बहुत सारी चीजों को लाना चाहिए ऐसे मगरोला बेसिकली पंजाबी का वर्ड है और हम लोग जैसे कहते हैं ना मिट्टी पाओ यार ये भी पंजाबी का वर्ड है लेकिन हम ये समझ जाते हैं मिट्टी पाओ यानी बात को अब जाने दो यार जान छुड़ाओ बात से ये है गाने का उन्मान और वैसे जिंदगी में भी कुछ इसी तरह ही करना चाहिए कि बहुत सारी बातें बहुत सारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिन पर जो है जिनको मगरोला देना चाहिए यानी कि मिट्टी पा देनी चाहिए यानी कि जान छुड़ा लेनी चाहिए बहुत चीजों को रिश्तों को लोगों को दोस्तों को कामों को हम अपने साथ ऐसे जोड़ के रखते हैं और खुद चिपक जाते हैं गो के उनसे बेहद नुकसान हो रहा होता है गौर फरमाइएगा मेरी बात पर जरा गौर फरमाइएगा तो ये जो मुसीबत हमने खुद अपने गले डाली होती यार मगरो ला दो भाई उनको आप मगरो लाओगे तो ओके ठीक हो जाओगे यानी कि समझ रहे हैं ना इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में अच्छा जनाब सवाल की जानिब जाएंगे और आज सवाल बड़ा मजेदार किस्म का है खाने पीने के हवाले से है और खाने पीने के हवाले के साथ अच्छा खाएं कुछ भी आप मैं खाने की बात कर रहा हूं जैसे कि नाश्ता दोपहर का खाना और रात का खाना इस तरह की खाने पीने की चीजों की बात कर रहा हूं कि ये ऐसी चीजें हैं कि और भी कुछ भी खाएं आपको उसका फायदा जरूर होता है 100% फायदा होता है अगर हम ना खाएं तो नुकसान है बंदा भी मर जाता है भाई भूख से आए अल्लाह भूख लगी भाई क्या करूं भाई और कुछ अल्लाह ताला ने नेमतें ऐसी बनाई हुई हैं खाने पीने के हवाले से कि जिनको खाने से ज्यादा फायदा होता है जैसे फ्रूट्स हैं उनसे बड़ा फायदा वाइटामिन एक से एक वाइटामिन वाले फ्रूट्स हैं और उन्हीं फ्रूट को अगर आप खुश्क मेवा जात भी कहते हैं मतलब ड्राई फ्रूट भी कहते हैं मेवा भी कहते हैं मतलब जो ड्राई हो जाते हैं तो आज का सवाल भी कुछ ऐसा ही है आपने बताना है कि वो कौन सा ड्राई फ्रूट या मेवा जात है जिसको खाने से दिमाग हमेशा सेहतमंद रहता है अच्छा सवाल को जरा गौर से आपने सवाल पर गौर करना है वो कौन सा मेवा जात है जिसके खाने से दिमाग हमेशा सेहतमंद रहता है दिमाग ब्रेन ठीक है ना ये सवाल है आज का और इसका देना है आपने जवाब 3636 पे बढ़ते हैं आगे आपके मैसेजेस की जाने जो कि आपके आ चुके हैं सबसे पहले फीता काटा हमारे यूसुफ भाई ने पापोश से और तमाम सुनने वालों को सलाम का है एफएम 100 की तमाम फैमिली को सलाम का है नालो नाल क्या का है आंटी को चाची को अरूसा को गुलबानो को तमाम डॉक्टर्स को इमरान भाई खिताब लाला गुफरान भाई और मेरे वालिद मोहतरम को उन्होंने सलाम का वालेकुम अस्सलाम थैंक यू यूसुफ भाई चार्ली आ गया भाई सलाम के बाद कह रहे हैं नदीम भाई शो वीआईपी ऑसम बिंदास बोले तो झकास और स्वीट फैमिली को सलाम आतिफ असलम का सॉन्ग दिल दिया गल्ला नहीं चलेगा इंडियन गाना है और मुश्क बहना को डेडिकेट कर दीजिएगा बिल्कुल कर देंगे आतिफ असलम का ही करेंगे मगर कोई और करेंगे यानी कि समझ रहे हैं ना आप अच्छा जी पीर मोहम्मद इलियास साहब आ गए हैं और कह रहे हैं नदीम भाई गुड जॉब माय बेस्ट विशेस यू एंड योर टीम प्लीज प्ले सॉन्ग अफशा अहमद का सॉन्ग पंजाबी अफशा अहमद ओके अफशा अहमद जिंदगी तमाशा वाली ना पीर मोहम्मद इलियास साहब अगर मैंने सही अफशा समझा है तो आप बताइएगा उनका कौन सा गाना चलाऊं अरे जिंदगी साथ है भाई जिंदगी आज आ गई है बड़ी दिनों के बाद आई है आप कह रही शो जबरदस्त आज मूड वाओ है वाओ हे हमजा छोटी ये बड़ी ये तक है अच्छा जी दिल में एक लहर सी उठी है अभी कोई ताजा हवा चली है अभी यानी कि समझ रहे हैं ना आप और जिंदगी का एक और मैसेज है जिंदगी साथ है आपकी आवाज में रूहे मन के लिए सॉन्ग हो जाए मेरी आवाज में अच्छा ये हमेशा मेरी आवाज की फरमाइश करती है तो जिंदगी अपनी आवाज में रूहे मन के लिए पक्का पक्का यानी का समझ रहे हैं ना आप
سمی صاحب بھی آگے ہیں اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم ندیم بھائی کیسے ہیں آپ, سلام ٹو غفران بھائی اینڈ آل لسنرز, اور ایک گانے کی فرمائش کر دی آپ نے, اوکے بھائی. اچھا یہ فرمائش کس کے لیے پہلے یہ بتائیں, اپنے لیے گانا چلوانا چاہ رہے ہو یا کسی اور کے لیے ہے, ڈیڈیکیٹ نہیں کرتا یہ گانا, خاص بات ہے ان میں شروع سے. اور ہماری پیاری سی بہنیں نورین بھی آ گئی ہیں, کہہ رہی ہیں السلام علیکم ندیم بھائی کیسے مزاج ہیں, ڈھیروں سلامتی کی دعائیں. ارے واہ واہ واہ واہ واہ یار نورین بہنا, یہ لگتا ہے آپ کھاتی ہیں بہت اور کہہ بھی رہی مجھے بہت پسند ہے یہ میوہ جات. بھائی بہت خوب, جیتی رہو مسکراتی رہو اور اسی طرح دماغ تیز چلتا رہے. ارے واہ بھائی واہ, سمیع کا بھی جواب آ گیا درست, حیرت ہے یار. آپ لوگ وہ انٹرنیٹ سے تو نہیں چیک کرتے, ویسے دماغ کے لیے کون سا ڈرائی فروٹ کھایا جاتا ہے ذرا اس پر غور کریں. ہاں جی تے ہیں جی, اسی بات پر ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں ایک بہت پیارے سے ٹریک کی جانب. ایلو پھڑو, کیوں نہ ڈیڈیکیٹ کر دوں یار, کیونکہ آپ کی جانب سے ڈیڈیکیشنز بہت آتی رہتی ہیں, تو یہ ٹریک ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے جناب ہمارے پیارے سے جنہوں نے فیدا گاٹا, یوسف بھائی پاپوش سے جو ہمیں میسج کرتے ہیں ہمیشہ بہت پیارا سا, تو ان کی جانب سے وہ جتنے بھی نام لیتے ہیں نا اسپیشلی یوسف بھائی, ان کو بھی ڈیڈیکیٹ کریں گے. جیسے ہماری پیاری سی آنٹی ہیں, چاچی ہیں, روسا ہیں, گلبانو ہیں, تمام ڈاکٹرز ہیں, عمران بھائی, فیداب لالا, غفران بھائی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مسز یوسف کو بھی یہ ان کی جانب سے ڈیڈیکیٹ کریں گے. ایلو پھڑو

वेलकम बैक आएंगे सुनियो सानू एक पल चैना वे सजना तेरे बिना और आई होप कि आपको पसंद आया होएगा। मैसेजेस कर रहे हैं आपकी जो स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर और सवाल मैंने आपसे किया है कि वो कौन सा मेवाजात है जिसको खाने से दिमाग हमेशा सेहतमंद रहता है। दिमाग सेहतमंद रहता है वैसे वो अक्सर हम बातें करते हैं ना ये खवातीन में ये चीज होती है इधर की उधर उधर की इधर लगाने की ये तो खवातीन में ये एक यू कहने के बिल्टन चीज है ये औरत के अंदर मौजूद है उसके पेट में बात नहीं रहती। लेकिन कुछ पुफो टाइप के ना मर्द भी होते हैं वो औरतों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो जो पुपो टाइप के बंदे होते हैं ना वो भी इधर की उधर लगा रहे होते हैं और दोस्तों से खूब जो है ना माशाल्लाह तवाजो होती है उनकी चंबे चमाटों से भी होती है और बातों से ज्यादा होती है। और चाय वाले होटल पर आपको अक्सर ऐसे लोग मिलेंगे बल्कि इसकी ताइद जो है समी जरूर करेगा जो कि इधर की उधर और इधर की उधर लगा रहे होंगे दोस्त की किट लगा रहे होंगे वो जैसे मुंह उधर करेगा आंख मार के बोलेंगे देख मैं क्या कर रहा हूं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो खैर दिमाग की ताजगी के हवाले से दिमाग के तेज होने के हवाले से बात हो रही तो मुझे ऐसे लोग भी याद आ रहे हैं कि ऐसे लोग होते हैं रेजिस्ट करते हैं। हैं जी ते हैं जी आगे बढ़ते हैं। दिल में एक लहर सी उठी है अभी ये गाना मुझे क्यों गजल याद आ रही है पता नहीं क्यों। अच्छा जी पीर मोहम्मद इलियास कह रहे हैं नदीम भाई यू आर सेइंग आई गिव फुल मार्क्स 100 to 100 आय हाय हाय जो मैंने किया है वो बिल्कुल ठीक है 100 में से 100 दे दिए। पंजाबी गाना सुनना है अंग्रेजी में मैसेज कर रहे हैं पीर मोहम्मद इलियास और वो भी ऐसी इंग्लिश के मेरे तो मतलब मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ यानी कि समझ रहे ना जिंदगी साथ है लगता है लाइट नहीं रूह मन के हाँ अयाज के शो में भी नहीं आई आवाज दें प्लीज। हाँ यार बात तो सही है संजू का मैसेज इस वक्त तक तो आ जाता है भाई कहाँ है संजू क्या इन्होंने वैसे जिंदगी कहीं आपने जाके तारे तो नहीं काटी वहां की जो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं बताइएगा भाई। और शादीशुदा जिंदगी भी कश्मीर की तरह होती है देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है मगर लड़ाई का खतरा 24 घंटे रहता है। सलीम मेमन भाई खूब कहा आपने वैसे बात फैक्ट है। वाह वाह वाह कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है मौसम बेमिसाल बेनजीर है ये कश्मीर है और ये कश्मीर है। हैं जी ते हैं जी वैसे आपने एंट्री अच्छी मारी है ओके टेक इसी बात पर हम जाएंगे एक ट्रैक की जानिब और ये ट्रैक डेडिकेट टू समी भाई येल्लो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। कोको जॉम्बो ट्रैक आपने सुना और उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। अच्छा यार ना ये अंग्रेजी लगता है ना ये किसी और जुबान का लगता है। कोको जॉम्बो ये लगता है साउथ अफ्रीका का, अफ्रीका का ये वैसे है ही अफ्रीकन सॉन्ग। एंड आई होप किफाज म्यूजिक सुनने वालों को ये पसंद आया होगा। मैसेजेस करें आप की चाय स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज और इसको सेंड करें 3636 पर। सवाल फिर रिपीट कर देता हूँ जनाब, वो कौन सा मेवा जात है जिसके खाने से दिमाग हमेशा सेहतमंद रहता है। गुरु मंदर से की माड़ी मेरी चली रे गाड़ी, घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर। आया कायदे आजम का मजार, गया प्यार ही प्यार। साहिबजादा साहिबजादा ये गाना क्यों? अच्छा गुरु मंदर से की माड़ी आपको बहुत याद आता भाई। मतलब हर कुछ दिनों के बाद इनका एक मैसेज नुमाइश गुरु मंदर की माड़ी। भाई बस के कंडक्टर तो नहीं हो? मजाक कर रहा हूँ दोस्त, बुरा नहीं मानिएगा। मजाहतन का है बात, मेरे बड़े अच्छे छोटे भाई हैं आप। हैं जी जी हैं जी। तो जनाब सवाल मैंने आपको बता दिया, हंसी मजाक भी हो रही थी और हंसी मजाक ही मैं कर रहा था। मैंने जैसे खवातीन के हवाले से ये बोला कि इधर की उधर लगाने वाली। अच्छा ये हर बिल्टन तो होता है ये खवातीन में, लेकिन कुछ जो होती हैं खवातीन उनमें ये ज्यादा चीज होती है। हर खातून में ये चीज पाई जाती है, हमारे घर में भी खवातीन है उनमें भी पाई जाती है, मगर एक रेशियो होता है कम होता है। लेकिन कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनसे खवातीन भी तंग होती हैं। भाई भाई ये तो हर वक्त, यानी कि समझ रहे ना आप। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दी थी और मैंने जो है ना ये बीसी या कमेटियां डालने वाली खवातीन जो होती है ना, उन वो जो अम्माएं होती हैं उस टाइप के जो बंदे होते हैं उनकी मैं बात कर रहा था। अच्छा ये जो हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं, इनके हवाले से बहुत सारी बातें होंगी। सभी ने भी इस हवाले से मैसेज किया है कि मैंने कल ही यहां ये सीन किया है, कुटनी वाला सीन किया है। कह रहे कि हमारे एक दोस्त हैं, उनकी वाइफ उसे गेट के अंदर से समझा रही थी, समझा रही होती हैं कि कल कह रही थी कि भाई रोल जो है रोल कबाब मत खाना। जब वो बाहर आया मैंने बोला पहले इसने बाहर आने से पहले अपनी अम्मी से पूछा होगा, फिर बेगम से पूछा। अब होटल पर जो है उसका इन्होंने भरपूर तरीके से रिकॉर्ड खींचा। क्या बात है नजीम भाई, जब से उसकी शादी हुई है उस बेचारे का बहुत रिकॉर्ड लगता है। बस आपका भी दिन आ रहा है करीब, अब तो चंद महीने रह गए, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, तैयार हो रहे हैं अभी। तो ऐसे बंदों के हवाले से मैं बात कर रहा था। अभी तुमने तो अपने आप को खुद ही बना दिया। रजमी ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा था कि ऐसे जो बंदे होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा ऐसे बंदे खानदान में जो पाए जाते हैं ना, वो थोड़े से एज वाइज ज्यादा हो जाते हैं, जब तो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और वो जो है खुसूसी तौर पर अम्मी अब्बू के कान भर रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई के ऊपर उनकी नजर होती है, मतलब हर चीज पर उनकी नजर होती है। और उस पर जो उनके कमेंट्स होते हैं, वाह वाह वाह आ गए आ गए, हल्ला गुल्ला करने आई है, एम ही आए

भी आए हैं, भी आए हैं। गुफरान भाई हमारे आ गए हैं। तो खैर इस हवाले से कोई हैं आपके गिर्दोनिमा में, खानदान में? मर्द की बात कर रहा हूँ, औरत की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा कि खवातीन में एक चीज बेल्टन होती है, ये मैं गुफरान भाई को बता रहा हूँ और एक बार फिर रिपीट हो रही है बात। तो वो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगाने वाली। लेकिन ये जो चीजें हर घर में होती है, हमारे घर में भी एक लिमिटेशन होती है, लेकिन कुछ खवातीन में ये चीज बहुत ज्यादा होती है और बहुत खतरनाक होती है। तो ऐसे में कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं पुफे टाइप के, वो उनसे ज्यादा खतरनाक डेंजरस होते हैं। मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ कि ऐसा कैरेक्टर जो है आपके पाया जाता है खानदान में। गुफरान भाई कह रहे मेरे खानदान में भी पाया जाता है, हमारे खानदान में भी पाया जाता है। अब भाई उनकी नजर जो है हर तरफ होती है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जॉब कर रहे हो, अगर जॉब कर रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो, तो आपको क्या मतलब इतनी पेट में क्या दर्द है छोटे पुप्पा। पुप्पा की बात भी है, अच्छा ऐसे पुप्पा होते हैं ज्यादातर। बस उनके हाथ में हर वक्त फुलझड़ी होती है जिसको वो जलाकर घुमा रहे होते हैं। एनीवे जनाब, लेकर चलते हैं आपको एक ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक हमारे चार्ली भाई ने हमारी प्यारी सी अपनी प्यारी सी बहना और को डेडिकेट किया था। वो मुश्क को बहना कहते हैं, तो उन्होंने कहा था आतिफ असलम का गाना दिल दिया गल्ला। भाई दिल दिया गल्ला क्यों चलाते हैं भाई, इंडियन है ना वो, भाई इंडियन कॉन्टेंट है। तो मैंने बोला कि हम चला देंगे आतिफ असलम का ही गाना। तो आतिफ असलम का गाना अमीन चार्ली की जानिब से एल्लो फड़ो।

वेलकम बैक। झूला, कितने दिनों के बाद ये ट्रैक सुना है। झूला झूला है, ब्यूटीफुल ट्रैक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, झूला झूला है। और कुर्सी पर जो है गुफरान भाई झूला झूल रहे हैं। माय लवली ब्रदर नदीम भाई, आपने अंदाज को हबीबी बीजीएम यानी बेस्ट ग्रेटफुल म्यूजिक के साथ किया करो। तो हबीबी ही तो चल रहा है भैया, लेकिन आपने अपना नाम क्यों नहीं लिखा? अपना नाम भी तो लिखिए भैया, कौन है आप, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अच्छा भाई, नदीम भाई, अच्छा जस्ट मजाक, बट लगाई बुझाई वाला सीन आपका भाई नहीं करता यार, मैं मुझे पता है शहजादे, ऐसी कोई बात नहीं, ओनली अपने काम से काम, बस दैट्स ग्रेट। नौरीन बहना क्या कहती हैं? बहुत कुछ कह रही हैं। मेरी रूहे जान को सलाम और ढेरों सलामती की दुआएं। रूहे जान गायब है और जिंदगी की बात थोड़ी सी समझ में आ रही है, कहीं वाकई में लाइट शेड ना गई हो, क्योंकि पाकिस्तान में ये स्टेबिलिटी इसकी तो है नहीं। और नदी भाई आज, अच्छा जी, एक फरमाइश है, वो फरमाइश पढ़ रहा था मैं। ओके जी, ओके जी। अच्छा ये क्या लिखती है, कहती हैं कि हर शख्स की बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास ब्लड ग्रुप के अलावा कोई चीज पॉजिटिव नहीं होती। बात तो सही है आपकी, वाकई में हकीकत है। और एक चीज और भी है, एतमाद और एतबार के हवाले से आजकल का दौर कुछ ऐसा चल रहा है भाइयों बहनों, कि इसमें ना हमारे बहुत ही एतबार, वैसे एतबार, जब एतबार को ठेस पहुंचती है ना तो इंसान को बहुत दुख होता है, यानी कि समझ रहे हैं ना। हाँ, तो एतबार को ठेस पहुंचाने वाला वही होता है जो आपके करीब होता है। आम बंदे को तो आप किसी खातिर में नहीं लाते, ज्यादातर लोगों का एतमाद एतबार टूटता है तो वो जो करीब होता है उसी से टूटता है। तो लिहाजा कोशिश किया करें अपने करीबी लोगों पर भी एतमाद ना करें, एतबार ना करें, तो फिर दिल ही नहीं टूटेगा, यानी कि समझ रहे हैं ना। हाँ, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और जफर साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप भाई? प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सब सुनने वालों को सलाम भाई जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब। अच्छा भाई, हमारे जानू बर्गर वाले भी सुन रहे हैं आज, और आज गुफरान भाई जानू बर्गर से बर्गर खा के आया हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी थी शायद में, बहुत मजा आया। जानू बर्गर भाई, बर्गर वाले, थैंक यू यार, थैंक यू। और इत्तेफाक से एफएम आते हुए खाया मैंने, तो जायका अभी तक है, यानी कि समझ रहे ना। गुफरान भाई को सलाम कह रहे हैं समी साहब भाई, वो कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। यार ये कौन सा अंदाज है वालेकुम सलाम कहने का। झूला झूलाए ये पन घट नदिया किनारे, आइसक्रीम खा रहे हैं, वेरी गुड। इसी बात पर हम चलते हैं। अरे हाँ, याद आया गुफरान भाई, कुछ गाने जो हैं वो आपकी जानिब से होने चाहिए। यार एक गाना बड़ा जबरदस्त है, पुराना गाना है मगर मुझे अच्छा लगता है, उमर अनायत पाकिस्तान के, ये तकरीबन समझ लीजिए कि लेट 90s में ये सिंगर आया था, और इसका ये मतलब गाने बड़े मशहूर हुए थे, और इवन के हिंदुस्तान ने भी इनके गानों को कॉपी किया था। तो इसका एक गाना बड़ा जबरदस्त था जो कि काफी पॉपुलर भी हुआ था, तो वो गाना हम आपको सुनाते हैं, और ये ट्रैक भी डेडिकेट करेंगे यार हम। हाँ बिल्कुल करेंगे, और किसको करेंगे जनाब? हमारे सलीम मेमन भाई, ठीक है जी, उनको डेडिकेट करेंगे। और यूसुफ भाई को कर दिया डेडिकेट, अमीन को भी, अमीन का भी हो गया, पीर साहब का भी ट्रैक रहता है। तो जनाब हमारे यूसुफ भाई हैं और जफर साहब हैं, ठीक है जनाब, इन दोनों को ये ट्रैक डेडिकेट करते हैं। एलो फड़ो

वेलकम बैक आएंगे ब्यूटीफुल यू ही ट्रैक उमर नायत का एंड आई होप यू लाइक इट। अच्छा जनाब अमीन कह रहे हैं नदीम भाई आप मुश्क बहना से मुझे ऐसा सॉन्ग प्ले करके पिटवाना चाह रहे हैं। और अने भाई कोई अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कर दे। डोंट माइंड यार अच्छा सब गाना प्यारी बहना यही गाना तो भाई सारे गाने ऐसे होते हैं। अब जरूरी नहीं है ये देखे दिमाग का फतूर होता है यार कि गाने की शायरी भी उसी हिसाब से आदमी सोच रहा हो। मैंने तो झूला झूलाए अपन घट न दिया निंदिया तू आना लोरी टाइप का गाना है। तो छोटी बहनों को तो ऐसे ही गाने डेडिकेट होते हैं लेकिन खैर फिर भी आपके लिए कोई और गाना भी डेडिकेट कर देंगे। और नदीम भाई ये किस मशहूर मूवी का डायलॉग है दो वक्त की साहबजादा भाई क्या लिखा हुआ है दो वक्त अच्छा डू वी गेट टू विन दिस टाइम दिस अच्छा अच्छा ये अंग्रेजी में लिखा था मैं समझा उर्दू में लिखा हुआ है। अच्छा लिखा है डू वी गेट होगा मेरा ख्याल गेज नहीं होगा टू विन दिस टाइम इज अप टू यू। ये मूवी कौन सी है भाईजन मुझे यकीन माने नहीं पता मैं पहली बार ये इस तरह का डायलॉग सुन रहा हूं। और ये जी ई जे कौन सा वर्ड होता है अंग्रेजी में मैंने टी लगा दिया अपनी तरफ से तो इसको जरा तसी कीजिए इसको दुरुस्त कीजिए उसके बाद भेजिए तो मैं शायद मेरे जहन काम करने लगे और मैं बता दूं कि भाई कौन सी मूवी का डायलॉग है। और सलाम प्यारे भाई नदीम हमेशा की तरह लाजवाब जो अल्लाह पाक आपको नजर बच्चे बजाए आमीन आप कोई रूह मन को सलाम और आपकी और एक सॉन्ग है जी ते हैं जी यार मैं आइंदा से इतना प्यारा मैसेज आपने किया बहुत बहुत शुक्रिया आपका मगर आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज जब भी मैसेज करें तो नाम जरूर तहरीर करें जनाब हो गया काम।

जी जनाब, तो मैं बात वहीं से शुरू करूंगा। इतने खूबसूरत प्यारे मैसेजेस मोहब्बत के साथ भेज रहे हैं, लेकिन मैं जब भी मैसेजेस के हवाले से बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के एच आई लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज लिखिए और फिर उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। आप लोग नाम ही नहीं लिखते, दिस इज बैड। अब अगर जितना मर्जी अच्छा अच्छे से अच्छा मैसेज होगा भाई, नाम नहीं होगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। हमारे आसिफ भाई सुन रहे हैं मुल्ला निहारी से। भाई आसिफ भाई कैसे हैं? रोटियां चल रही हैं कड़क कड़क, और निहारी भी बहुत जबरदस्त होती है भाई। हमारे ये बेसिकली बड़े हमारे प्यारे से दोस्त हैं जिनका ये होटल है, और वहां पर हमारे आसिफ भाई भी होते हैं। तो मतलब ये वो मकाम है दो कि जहां, अच्छा एक सालों से प्रोग्राम कर रहा हूं और सालों से इन लोगों के पास जा रहा हूं, जानू बर्गर वाले के पास भी और आसिफ भाई के पास भी, मगर इत्तफाक से इन्होंने सुन लिया और सुना, और उसके बाद फिर इनको पसंद भी आया तो अब ये सुनते हैं। तो हमारे आसिफ भाई आज आपको भी गाना डेडिकेट करते हैं एक अच्छा सा, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, रोटियां कड़क चाहिए। सलाम, कैसे हैं वाली साहब? कैसे हैं संजू? और सबको सलाम, तमाम सुनने वालों को सलाम। ये हमारी प्यारी सी बहना जरीन नूर कह रही हैं। जरीन भी देर से आई है आज। अच्छा, नौरीन तौसीफ बहना जो है ना वो जल्दी आ गई। ये तीनों बड़ी अच्छी दोस्त हैं। संजू के यहाँ जो है वो लगता है लाइट नहीं है। हैं जी, थे हैं जी, लेकिन हम गाने जरूर डेडिकेट करेंगे। नौरीन ने भी ट्रैक डेडिकेट करने के लिए कहा है और जरीन नूर ने भी कहा है। तो संजू अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो कोई गाल नहीं की, असी थोड़े नाल नाल, मतलब हम आप लोग के, हम तमाम आप लोगों के, आपके साथ हैं। लोगों के मुंह से निकल रहा है। अमीन कह रहे हैं नदीम भाई, अच्छा कोई गाने का बता रहे हैं, अखबार अली के गाने। यार ये जो है ना इम्तिहानों में नहीं डाला करो, गाना ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है, तुम्हें पता नहीं है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब डेडिकेट कर दें एफएम 100 की ऑल फैमिली को, थैंक यू। नाइस भाई, माइंड नो भाई, नहीं नहीं माइंड नहीं करता मैं। जफर भाई कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा सॉन्ग था, मेरा ख्याल लिखना चाह रहे हैं भाई। अल्लाह आपको सेहत जिंदगी दे, आमीन। हाँ यूं ही, मैंने जफर भाई का भी नाम लिया था। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, अल्लाह आपको बहुत खुशियां दे, आमीन। जफर भाई गार्डन से, जफर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे ये नया नया गाना था, मतलब नया नया से बना, गाना तो बहुत पुराना है, मगर ये गाना जो पॉप सुनते हैं उनको ज्यादा पसंद आता है। वैसे आज कुछ गाने भी कुछ पॉप टाइप के हैं भाई। कितने अच्छे हैं हमारे गुफरान भाई, आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो जनाब फरमाइशें पूरी करनी है, और फरमाइशें पूरी करने के लिए हमें इसको दोबारा से, हाँ, रिफ्रेश करना पड़ेगा।

0: वेलकम बैक जान खट लैया भाई माना वे जाने वाली गल करके ब्यूटीफुल ट्रैक। खैर ये जो हमारे मिलीनियर्स और जेनेक्स हैं उनको बड़ा पसंद आया होगा ये ट्रैक, और स्पेशली जिनको पंजाबी समझ में आ रही है। आमिर साहब गुलशन से कह रहे हैं सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम भैया, क्या हाल है आपके। और हमारे शाहजादा ने अब बेहतर तरीके से स्पेल करके लिख दिया है, Do we get to win this time? आए, मैं वो कॉपी कर रहा था उस बंदे की, मेरा फेवरेट बंदा दिलबर जानी, सिल्वेस्टर स्टॉलोन। और रैम्बो, माने में रैम्बो जॉन रैम्बो, साहबजादा ने बता भी दिया। वैसे अगर आप नहीं बताते तो मुझे याद आ जाता ये पक्का पक्का। यार क्या मूवी थी रैम्बो, नहीं फर्स्ट ब्लड अगर आपने नहीं देखी, ऑलमोस्ट आई थिंक ये 80s की मूवी है, गो कि मैंने भी बहुत बाद में देखी थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने स्टॉलिन की मूवी फर्स्ट ब्लड नहीं देखी, रैम्बो का तो सबको पता है, ये रैम्बो बना कहां से। इसकी फर्स्ट मूवी जो आई थी वो थी फर्स्ट ब्लड। वो फर्स्ट ब्लड आप मूवी जरूर देखिएगा, आज भी आप देखेंगे तो आज भी आपको वो मूवी, जो यंगस्टर्स हैं वो फर्स्ट टाइम देखेंगे तो उनको आज भी वो मूवी अट्रैक्ट करेगी। बड़ी जबरदस्त फिल्म है यार, क्या याद दिला दिया यार। जॉन रैम्बो हम जरूर देखेंगे, बहुत जल्द देखेगा। अदीला मेरी प्यारी सी बहन आ गई है, कह रही सॉरी मैं भूल गई, क्या भूल गई। अच्छा भाई एक हमें और मैसेज आया है, और संजू जो हैं उनके यहाँ वाकई में लाइट नहीं है, तो जिंदगी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, और उनके यहाँ लाइट नहीं है जिसकी वजह से उनके मैसेज ना आने की वजह ये लाइट है, और उनको काफी बेचैनी भी हो रही है कि हम मैसेज किस तरह करें। तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है, खुसूसी तौर पर उन्होंने नौरीन बहना को सलाम कहा है, और उसके साथ साथ जो है अदीला को भी, इसके साथ साथ जरीन नूर को भी, और एडवांस में थैंक्स भी कह दिया गानों का, यानी कि समझ रहे ना आप। हाँ समझे समझे। और हबीबी, तो एक नौरीन बहना की भी एक फरमाइश है, वो हम जरूर पूरी करेंगे, बट नॉट नाउ। उसकी वजह है वो थोड़ा सा स्लो स्लो टाइप का गाना है, और अभी जो है हम ट्रैक की जानिब चलते हैं। और ट्रैक कौन सा यार, स्लो स्लो ट्रैक अभी नहीं चलाने, वो हम 2 बजे के बाद ही चलाएंगे। मतलब स्लो से मुराद ये है कि मेलो टाइप के जो ट्रैक होते हैं, तो मेलो टाइप के ट्रैक बहुत से हैं मेरे पास, वो हम बाद में चलाएंगे। अभी हम जिस ट्रैक की जानिब जा रहे हैं जनाब, ये भी डेडिकेट करेंगे हम और हमारे प्यारे से जो आसिफ भाई हैं, मुल्ला निहारी वाले और जानू बर्गर। जानू बर्गर वाले को तो मैंने एक स्पेशल गाना डेडिकेट करना है आज, तो वो तो हम बाद में करेंगे, अभी हम आसिफ भाई को ट्रैक डेडिकेट कर देते हैं। अली जफर की आवाज में एलो फड़ो।
1: What is your behavior of choice this evening? Do I sound a little cheesy? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Let's dance.
2: Oh yeah.

वेलकम बैक कहेंगे सुनो। और उम्मीद करते हैं आसिफ भाई आपको गाना पसंद आया होगा। और अनीस साहब कह रहे हैं नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, तमाम सुनने वालों को सलाम। अनीस भाई क्या बात है, आजकल बड़े खामोश खामोश से हैं भाई, सब खैरियत है भाई। और जनाब थोड़ी देर पहले मैंने आपको संजू के यहाँ लाइट के मुतालिक जो बताया इतनी डिटेल, वो सारी डिटेल हमें दी हमारी नौरीन बहना ने। और उन्होंने ये भी कहा था कि रुए जान के यहाँ लाइट जो है नहीं है, और वो सबको सलाम भी कह रही है, उनकी थोड़ी देर पहले बात हुई थी इस वजह से। हैं जी जी हैं जी। हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब भी आगे कह रहे वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, नूर जहान और सज्जाद अली की आवाज में कोई सॉन्ग सुनवा दीजिएगा मेहरबानी होगी। सभी शेख अयूब आफरीदी नसीम कुरैशी शेख अदाबुल्ला इमरान रियाज और मेरे वाजिबुल एहतराम वालिद मोहतरम की खदमत अकदस में अकीदत भरा सलाम पेश किया। हर लम्हा दुआ गो नेक ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफ जई एफबीरिया कराची से। अच्छा से सॉन्ग संजू के नाम बिल्कुल जनाब करेंगे, डोंट वरी डोंट वरी। अदीला ने भी कहा हुआ और आप भी हैं, जरीन नूर है मेरी बहना। तो वक्त जाया किए बगैर हम चले गाने की जाने बढ़ते हैं, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करते हैं जरीन नूर की जानिब से संजू को।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो तुम ट्रैक का टाइटल मुर्तजा कजलवाश इसके सिंगर और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सोनियो। स्लीपलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ और आपका और मेरा साथ जो है वो है जनाब 3 बजे तक और ये अल्लाह गुला जारी और सारी है 3 बजे तक। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए कि चाहे लिखिए स्पेस दीजिए अपने प्यारा सा नाम प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। अरीला कह रही है प्यारे भाई नदीम शो की तारीफ और उसके बाद कहा है कि हमारी रूहे मन को सलाम कह दीजिए और एक सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा। अरीला मेरी बहना आपके कहने से पहले हम ये कह चुके हैं लेकिन अभी एक ट्रैक और डेडिकेट करना है, उससे पहले सवाल भी रिपीट कर दूं मैं कि सवाल मैंने आपसे ये किया था कि आपने ये बताना है कि वो कौन सा मेवा जात है जिसके खाने से इस्तेमाल करने से जो है इंसान का दिमाग जो है वो हमेशा सेहतमंद रहता है और इसका जवाब माँ सिवाय समी के और नौरीन बहना के किसी ने अभी तक नहीं दिया। अमीन भाई अगर आप बताइएगा इस हवाले से, साफ ज्यादा आप बताइएगा इस हवाले से, हदीरा आप भी बताइएगा इस हवाले से, जरीन नूर भी बता, जरीन नूर तो बताती है अक्सर मगर आज नहीं जवाब दिया। अमीन कह रहे हैं कि आज पता चला है संजू बहना लाइट पे चलती हैं। संजीदा बहना नौरीन बहना थैंक यू, जरीन बहना आपकी इन्फॉर्मेशन का सलाम। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो भाई हमारे अयूब आफरीदी भाई जो हैं उनकी जानिब से एक ट्रैक उन्होंने कहा है कि प्लीज आप चला दीजिए और डेडिकेट कर दीजिए सबा गुल को, एना गोल को, महानूर को, मोश को, इन चारों को डेडिकेट कर दीजिएगा और कह रहे थे कि आप डेडिकेट करेंगे तो जीबीएन बहुत खुश होगी। एलो फड़ो

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनाओ आप सबको जमा सरदारा दमियारा ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप के सबको पसंद आया होगा। अच्छा जनाब मैसेंजर्स पर जितने भी मेरे प्यारे प्यारे से लिसनर्स मुझे मैसेजेस करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अब ना करें प्लीज, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। उसकी वजह यह है कि मैं इस वक्त लाइव हूं फेसबुक पर और अगर आप चाहें तो यहां पर आकर मैसेजेस कीजिए और सवाल का जवाब भी दीजिए अगर देना चाहें तो, क्योंकि काफी लोगों ने तो सवाल का जवाब ही नहीं दिया। सवाल मैंने आपसे ये किया था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि वो कौन सा मेवा जात है जिसको खाने से इंसान का दिमाग जो है वो फ्रेश हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है। जैसे वो जो मैंने कुछ मिसालें भी दी थी इस हवाले से शो के आगाज में, उन लोगों का दिमाग बड़ा चलता है। खैर तो जनाब फेसबुक पर लाइव है तो आ जाइए, जिन जिन्होंने यहां पर आना है खुसूसी तौर पर जैसे समी साहब हैं और नौरीन बहन है हमारी, मिर्जा साहब आज गायब ने भाई गुज्जर खान, तो गुल साहब भी गायब ने, और भी जितने भी हमारे अलीमुद्दीन साहब हैं, तो ये तमाम जितने भी मैसेंजर्स पर मुझे मैसेजेस करने वाले हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज यहां पर आ जाए। जिंदगी कह रही है जबरदस्त शो माशाल्लाह से, आपकी दिलकश आवाज में शरारती अंदाज अच्छा लग रहा है। जिंदगी अभी आपका गाना जो है ना वो हम अभी शामिल करेंगे कुछ ही देर में, डोंट वरी। नवीद अली कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, वाह वाह वाह वाह वाह वा, नवीद भाई क्या बात है, ये छोटे भाई वाले नवीद हैं या दूसरे कोई नवीद साहब हैं? लेकिन नवीद साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया है, ओके टेक जवाब दिया है, थैंक यू। जवाब मैं इस वजह से नहीं जो है वो बता रहा, सबको पता चल जाएगा, वो हम बताएंगे तकरीबन 15-20 मिनट के बाद आपको जवाब सीधा जवाब की है। जवाब देने में कौन वैसे ज्यादा माहिर है, फर फर जवाब कौन देता है आप मुझे ये जरा बताइएगा, खवातीन इसमें माहिर हैं या मर्द हजरात? सभी कह रहे हैं
1: आ गया मैं, अरे बहुत अच्छी बात है तुम आ गए भाई, थैंक यू।
0: हमारी प्यारी सी बहन जो है फरीदा बुरहानुद्दीन, मैं उनके साथ शरारते करता हूँ इस अंदाज में, तो वो क्योंकि पीर और मंगल का ही शो सुन पाते हैं वो, खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास पड़ते हो सर्दियों की शामों में। तो अब्दुल्ला जो है आरिफ हमारा ये प्यारा सा बच्चा ये भी सुन रहा है, तो अब्दुल्ला जरा बताओ सवाल जो किया है। नौरीन बहना भी आ गई है कह रही है अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, बहुत अच्छा किया, ओके ठीक, थैंक यू बहना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, नहीं बताना जवाब सभी यहाँ पर, जवाब नहीं बताना, और नौरीन बहना आपने भी जवाब यहाँ पर नहीं बताना, सबको पता चल जाएगा। सवाल का जवाब है नदीम भाई, ओके, और पांच, अच्छा अच्छा इन्होंने चार पांच चीजें मिला दी है साथ में, इससे दिमाग तेज हो जाता है। सवाल एक बार फिर रिपीट करूंगा, वो कौन सी चीज है मेवा जात है जिसको खाने से दिमाग हमेशा सेहतमंद रहता है? हैं जी जी हैं जी, ये ध्यान में रखिए ना आप लोग। सवाल ये है वो कौन सा मेवा जात है, अब्दुल्ला आरिफ कह रहे हैं मुझे सवाल नदीम भाई दोबारा बताएं। नदीम अंकल, इसके लिए तो अंकल हूं ना, ये हमारा छोटा बच्चा है। तो सवाल ये है कि वो कौन सा मेवा जात है, मेवा जात से मतलब जात ड्राई फ्रूट, वो कौन सा है कि जिसको खाने से दिमाग हमेशा सेहतमंद रहता है? हैं जी जी हैं जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। यार एक गाना है बड़ा जबरदस्त है, उस गाने की जानिब जाने हैं। अच्छा नौरीन बहना आपने जो ओएसटी का जो फरमाइश की है वो हम आखिर में चलाएंगे, वो बहुत स्लो है, ज्यादा स्लो से टेम्पो सारा बिगड़ जाएगा, इस वजह से कह रहा हूं। नदीम भाई अच्छा जी, इन्होंने जो है ड्राई फ्रूट के कुछ के नाम लिए, वो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, और वो कह रहे हैं ये नहीं है, आपने एक बार पहले सवाल किया था मेरे जहन से निकल गया। हाँ साहबजादा दासियों खाना यार तुमको याद होना चाहिए था। अच्छा जी रोमेल खान कह रहे हैं सलाम सुने हो, वेलकम, मैं स्मार्ट अमीर खान योर ओल्ड लिसनर। अरे अमीर खान कहाँ गायब हो तुम, शादी वादी तो नहीं कर ली गई? लगे सिरे शादी के बाद अक्सर जो है ना लिसनर गायब हो जाते हैं, जैसे सींग जिसके जानवर के सर से गायब होते हैं। और बिल्कुल अमीर खान है यार, तुम्हारा नाम लिखते हैं अमीर खान, ओल्ड अमीर खान, امیر خان کا نام لکھ لیا ہم نے اور ان کو ہم نے گانا ڈیڈیکیٹ کرنا. سمارٹ بلکہ ان کا ساتھ میں ضرور ہوتا تھا تو وہ بھی لکھتے ہیں ساتھ میں, تو سمارٹ امیر خان کو ہم نے گانا ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. تو فی الحال ہم ٹریک جس ٹریک کی جانب جا رہے ہیں یہ ٹریک ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے نادیہ کو. نادیہ بھی سن رہی ہیں اور ان کا میسج بھی آیا, تمام سننے والوں کو انہوں نے سلام بھی کہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے سے لسنر ہے انیس کو بھی یہ ٹریک ڈیڈیکیٹ کریں گے اور آپ سب کو بھی ایلو پھڑو.

वेलकम बैक। मैं नालो नाल गाने भी गा रहा था। अरे हमारी प्यारी सी बना जरीनूर भी आ गई है यहाँ पर और कह रही है सलाम भाई। जरीनूर आपका गाना डेडिकेट कर दिया हमने, यानी कि समझ रही है ना। और एक और गाना डेडिकेट करना है, हम भी थोड़ी देर में करेंगे। डोंट वरी डोंट वरी, हम सारे गाने डेडिकेट कर देंगे। अभी भी तीन लोग रहते हैं जिनको ट्रैक डेडिकेट करने हैं। एक तो हमारे जानू बर्गर वाले हैं, जानू तुम सुन रहे हो तो हम तुम्हें भी गाना डेडिकेट करेंगे। और उसके साथ साथ क्या था, नौरीन मैना का रहता है जिंदगी और स्मार्ट अमीर, ये मैं देख रहा था पढ़ रहा था। अच्छा जी, मैंने जवाब दे दिया है 3636 पर, मैंने पढ़ लिया है, वो सामने मेरे लिखा हुआ है, हैं जी, लेकिन मैंने जवाब बताया नहीं है कि क्या है। काश मेरे पास इतने पैसे होते, FM 100 पे लगा देते, ट्रांसमिशन और सिस्टम भी ठीक हो जाते। सब ठीक है, कैसी बातें कर रहे हो यार, हमारी ट्रांसमिशन भी सही, सिस्टम भी सही। हाँ वो अलग बात है कि तारों पर कव्वे बैठ जाते हैं, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अच्छा जी, थैंक्स कर दिया जरीन ने सॉन्ग्स के लिए, स्पेशल गेस्ट होंगे आप। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से होगी गुफ्तगू। तो जनाब सवाल एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। सवाल मैंने ये किया है अपने तमाम लिसनर से कि बताइए। अच्छा भाई, हमारे नवेद अली साहब ने जो जवाब दिया है ना, वो भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया है। लेकिन अब सवाल पहले सुन लीजिए। सवाल ये, वो कौन सा मेवा जात है जिसको खाने से इंसान का दिमाग जो है वो तंदुरुस्त रहता है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और नवेद भाई ने इसका दुरुस्त जवाब दिया, जरीन बहना ने भी जवाब दिया इसका, मगर वो हमने पढ़ा नहीं है। अच्छा जी, और अच्छा इनका जवाब जो है ना, वो मैं पढ़ूंगा आपका जवाब जरीन नूर, मगर अभी नहीं, क्योंकि वो बहुत लोगों का दिमाग जो है ना बड़े फिर तेजी से चलता है, फौरन बता देंगे जवाब, क्योंकि ज्यादातर तो दुरुस्त जवाब आ रहा है, मगर यानी कि समझ रही है ना आप। अच्छा जी, नौरीन बहना कह रही है जरीन बहना को वेलकम कि वो यहां आई। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास पड़ते हो सर्दियों की शामों में। तो मैं सोच ही रहा था मैं गाना कौन सा गाऊं, क्योंकि बेसुरा तो गाता ही हूं, लेकिन कौन सा गाऊं। जो गाने में गाता हूं वो सारे सुन सुन सुन गा गा के थक चुके हैं यार। लेकिन जनाब जनाब जनाब जनाब थोड़ा सा सुनाता हूं आपको, दो चार लाइनें सुनाऊंगा, ज्यादा गाना नहीं सुना दूंगा, उसके बाद फिर एक ट्रैक की जानिब जाएंगे। ठीक है जनाब।

वेलकम बैक कहेंगे सुनो। हमारी नौरीन बहना कह रही है सज्जाद अली का ही सुना देते हैं, दो बोल सुना दूंगा नो प्रॉब्लम। तो जनाब जिंदगी की जानिब से रूहमन को ये ट्रैक डेडिकेट किया, ये भी हो गया। नौरीन आपी को भी सलाम, और नौरीन आपी आपको हम दो लाइन जरूर सुनाऊंगा सज्जाद अली भाई का। सही है नदीम भाई, शादी की डेट भी मैंने इसलिए रखी है आपका एफएम से ऑफ होगा हाँ, क्योंकि मेरे शोज ही रात को होते हैं, सो दैट्स व्हाई इस तरह के ओकेजन्स अक्सर मुझसे छूट जाते हैं। और जनाब हमारे स्मार्ट अमीर कह रहे हैं नाइस वॉइस सुनो, कभी आप अपने शो पे अपनी वॉइस में कुछ गुण

अपनी वॉइस में कुछ गुनगुनाया करो कि बेटा अक्सर ऐसा ही होता है जनाब, अक्सर होता है। उसकी वजह यह है कि हमारे प्यारे प्यारे से लिसनर जो है वो हमें फरमाइश करते हैं तो फिर हम थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। नवीद अली कह रहे हैं नदीम भाई दिमाग वाला शख्स ही फर फर जवाब देता है। कौन से दिमाग वाला शख्स ये भी बताइएगा। और अच्छा साहबजादा का दोबारा वही वाला मैसेज आ गया है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वाओ थैंक्स, ये सॉन्ग किसके नाम किया है माशाल्लाह से, जिंदगी बताया तो है आपके नाम किया और वह मन के नाम किया आपकी जानिब से। हैं जी जी हैं जी। अब आपको एक और मैसेज करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि आपने समझ लिया है। अच्छा वक्त क्योंकि तेजी से गुजर रहा है, आप लोगों की डेडिकेशंस भी हैं, आप लोगों की फरमाइशें भी हैं, सवाल मैंने फ्लोट वैसे ही किया हुआ है वो उसका जवाब आप दे रहे हैं। तो अभी क्योंकि मैंने थोड़ा सा सुनाया है तो इससे पहले कि मैं सुरीले गाने आपको सुनाऊं तो बेसुरी आवाज में दो लाइनें और आपको सुना देता हूं। ये हमारी नौरीन बैनर रेडियो पर सुनना एको के साथ अच्छा लगता है।

नौनी मैडम आपके लिए भी हमारी प्यारी सी बहन फैसला बात से सुन रही होती है, उनकी फरमाइश क्यों नहीं पूरी करेंगे हैं जी, ते हैं जी। अच्छा फौरन मैसेज भी आ गया, बहुत अच्छा सुनाया आपने, शुक्रिया। तो अभी हम एक फरंगी ट्रैक की जाने जा रहे हैं, अंग्रेजी ट्रैक है और जो इंग्लिश सॉन्ग लवर हैं उनको ये गाना बहुत पसंद आएगा। और ये गाना जनाब एलो पढ़ो

Welcome back, Angi. I could use a love song, beautiful track. It's OST, original soundtrack, ek movie ka hai. और बहुत जबरदस्त ट्रैक है. समी ने इस सॉन्ग की मेलोडी और म्यूजिक क्या बात है. और कह रहे हैं अगर आप मेरी शादी पर आप और गुफरान भाई नहीं आए तो इसका भी मैंने हल सोचा हुआ. क्या हल है भाई. थैंक यू सो मच फॉर योर सॉन्ग डेडिकेशन. सुनियो हाय स्मार्ट अमीर जीते रहो जिंदगी करिए वाओ थैंक्स. और मुझे मालूम है जिंदगी और रूहेमन के नाम आपकी दीवानी ये याद रखेगा हमेशा. अरे ना इस तरह की बातें ना किया करो जिंदगी. इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में. यूं आज बढ़ती सर्दियों की शाम. अच्छा जनाब मैंने जो सवाल किया है अब फौरन से पेशतर उसकी जानेब आ जाता हूँ और उसके बाद आपके जवाब जो है पहले मैं उनमें पढ़ लेता हूँ और फिर ओरिजिनल जो इसका जवाब है वो मैं आपको दूंगा. और साहबजादा ने कहा नदीम भाई बादाम और अखरोट सही जवाब नहीं है. आपने एक बार पहले भी इस सवाल का आपने पहले भी इसका सवाल किया ऐसा सवाल किया था मेरे जहन में इससे जवाब निकल गया. और जरीन नूर कह रही है कि सवाल का जवाब है बादाम और पांच मगज खाने से दिमाग तेज हो जाता है. मैंने तेज नहीं सेहतमंद दिमाग का पूछा था. मैं खुद शादी के बाद FM 100 आऊंगा आपको और गुफरान भाई का हिस्सा लेकर. अबे क्या कुर्बानी कर रहे शादी कर रहे क्या हो गया समी कौन सा हिस्सा लेकर आएगा. समी कह रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं आए तो मैं आप लोगों का हिस्सा लेकर आऊ. तो कुर्बानी कर रहे हो शादी कर रहे हो मेरे शहजादे जरा बताओ बकरीद को तो नहीं कर रहे हो. बकरीद के दूसरे दिन तुम्हारी शादी है. खैर ये मजातन कह रहा हूँ. मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. और आगे बढ़ते हैं जनाब. और नवीद अली ने कहा था अखरोट से दिमाग तेज हो जाता है. वाह वाह वाह वाह. अच्छा और इसी तरह जरीन नूर का भी जवाब नौरीन बैना ने भी अखरोट कहा और समी ने भी अखरोट कहा. अच्छा अब आप लोगों को इसका दुरुस्त जवाब बता देता हूं. अक्सर लोग ये समझते हैं मैंने बार बार ये आप लोगों को कहा कि भाई ये जहन में रखें कि मैं सवाल क्या कर रहा हूं. सवाल मैंने आपसे ये किया था वो कौन सा मेवाजात है कि जिस को खाने से इंसान का दिमाग सेहतमंद रहता है हमेशा सेहतमंद रहता है. तो आप दिमाग तेज की बात कर रहे हैं जैसे नवीद भाई ने कहा दिमाग वाला शख्स ही फरफर जवाब देता है. ये भी इनका एक आया था जवाब. तो जब तो एक दिमाग का तेज चलना और दिमाग का सेहतमंद रहना वैसे सेहतमंद दिमाग ही जो तेज चलता है. तो इसका ओरिजिनली लोग को ज्यादातर ये पता है कि बादाम खाने से दिमाग जो है वो तेज चलता है या सेहतमंद रहता है. ऐसा नहीं है बिल्कुल. अखरोट से जो है वो दिमाग जो है वो अखरोट खाने से बेहतर होता है यानी कि सेहतमंद रहता है. तो दुरुस्त जवाब है अखरोट यानी कि समझ रहे हैं ना. तो जनाब अभी हम एक ट्रैक की जानिब जा रहे हैं और ये ट्रैक जो है. अच्छा समी कह रहे हैं कि मेरी कुर्बानी होगी तो अपना कौन सा बाजू लेकर आएगा. ये भेजा लेकर आओगे. भेजा ले आना ज्यादा वो ज्यादा बेहतर. उससे ये होगा कि सुकून में रहोगे. शादी की सेलिब्रेशन है पंप पर होगी. अच्छा आप पहले से ये फुल टाइम इरादा रख रहे हो कि हम दोनों नहीं आएंगे. और हम दोनों ने हालांकि पहले से इरादा किया हुआ है कि समी की शादी पे जरूर जाएंगे. और जनाब अमीन अरे हाँ हमारे सलीम मेमन साहब कहाँ गायब हो गए. दो मैसेज करने के बाद अमीन कह रहे हैं कि मेरी ड्राई फ्रूट से नहीं डंडा खाने से अकल तेज काम करती है. ये तो हर इंसान के साथ होता है. जब बाप के डंडे पड़ते हैं तो बस फौरन दिमाग चलने लगता है. इंसान पढ़ने भी लगता है सीधे काम भी करने लगता है. तो अमीन भाई अपनी हरकतें दुरुस्त कीजिए और सेहत भी ठीक हो जाती है सेट हो जाती है अम्मी का डंडा खाने से. अच्छा अम्मी और या बुए की बात है. आई एम जोकिंग बेगम तो है ही नहीं. अमीन भाई बेगम नहीं है अभी. वो आएगी तो फिर अम्मी और अब्बू की बहुत याद आएगी. जब भी डंडा पड़ेगा ये अम्मी की तरह मारा तुमने ये अब्बू की तरह मारा तुमने फिर ये होगा. अच्छा भाई फुल टाइम वो अब शादी के न्योते दिया जा रहा है मुझे. कह रहा है आएंगे तो वीआईपी हो जाएगा.
इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो सज्जाद अली की आवाज को शामिल करते हैं और ये ट्रैक हम स्पेशली डेडिकेट करेंगे भाई स्मार्ट अमीर को और अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब आपको। और ये ओरिजिनल ट्रैक कोक स्टूडियो वाला ट्रैक सज्जाद अली का नहीं चला रहा, ओरिजिनल ट्रैक चला रहा हूं। जरा समाज फरमाइए, मजा आएगा। इसमें शायरी भी डिफरेंट है।

वाह भाई तुम नाराज हो मेरे कितने पास हो। ब्यूटीफुल ट्रैक आपने सुना। अच्छा भाई आप लोग ये ट्रैक सुन रहे थे और फेसबुक पर जो है मैं कुछ चर्चा कर रहा था, पहले कुछ शादी के हवाले से बात हो रही थी और उस पर जो है वो हमारे स्मार्ट अमीर कह रहे हैं कि मेरी नजर में शादी के बाद इंसान बस सारी जिंदगी कमाने में लगा रहता है, खुद के लिए कुछ करे या ना करे बस बच्चे बीवी के लिए सारी जिंदगी कमाने में लग जाता है। बात ये हो रही थी कि मेरे बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं जो कि शादी जब हो जाती है तो उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, तो हम हंसी मजाक करते रहते हैं, वो अपनी जगह पर है। तो शादी के बाद ये होता है कि जो मैं बात लाइव कर रहा था वो मैं भी आप लोगों के साथ लाइव कर रहा हूं, वो ये थी कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है इंसान की, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। मर्द तो स्मार्ट अमीर कमाने लगता है और औरत पर जो है ना वो जिम्मेदारी आ जाती है घर की, खाना पकाना, कपड़े धोना, घर की सफाई, फिर अल्लाह ताला जब औलाद से नवाज देता है तो बच्चे की देखभाल, ये तमाम चीजें औरत अपने एंड पर काम कर रही है और मर्द अपने एंड पर काम कर रहा होता है, क्योंकि ये जो घर चलता है ये इसी तरह चलता है। मतलब घर को चलाने के लिए पैसा भी बहुत जरूरी है, जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मर्द के सुपुर्द की है बेसिकली ज्यादा। तो अब आजकल तो खैर औरतें भी माशाल्लाह से कमाती हैं, लेकिन ये बेसिकली जिम्मेदारी मर्द की होती है और घर जो चलाना है वो बेसिकली जिम्मेदारी औरत की होती है। तो ये दोनों, जैसे कहते हैं ना कि एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो ये दो पहिए इसी तरीके से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द जो है वो ज्यादा जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है और औरत कम पूरी कर रही है। तो ये शादी जो है ये एक ऐसा बंधन है और अल्लाह ताला इसमें एक ऐसी एफिलेशन मियां बीवी में कुदरती तौर पर पैदा कर देता है कि सबसे प्योरिटी जो होती है वो मर्द के लिए यही हो जाती है। तो यही वजह होती है ज्यादातर कि शो जो है वो नहीं सुन पाते शादीशुदा लोग, लेकिन जब शादी हो जाती है तो शुरू के दिन तो बड़े अच्छे अच्छे से गुजर जाते हैं, दो चार पांच महीने साल, तो उसके बाद फिर और जिम्मेदारी बेहतर तरीके से आ जाती है। बट जब भी मौका मिलता है, मैंने ये देखा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने तमाम उन लिसनर्स का कि जो कई सालों से सुनते रहे फिर बीच में शादी के बाद गायब हो गया, उसके बाद फिर जब भी उनको मौका मिलता है तो वो जरूर टाइम निकालकर शो सुनते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो जनाब ये सिलसिला कार था और अब जो है क्योंकि वक्त बड़ा महदूद सा रह गया है और दो ट्रैक और मैंने जो है वो डेडिकेट करने हैं, तो अभी हम जिस ट्रैक की जानिब जा रहे हैं वो ट्रैक जनाब हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ ने एक ओएसटी की फरमाइश की थी, तो उनकी फरमाइश हम पूरी करते हैं। कैदे तन्हाई एक ड्रामा था, आज से तकरीबन कोई 15-16 साल पुराना ड्रामा है, बेहतरीन ड्रामा था ये, और मेरा मतलब मेरे फेवरेट ड्रामों में से एक है। तो उसका जो है ओएसटी, उसकी फरमाइश की है हमारी बहन नौरीन तौसीफ ने, तो नौरीन तौसीफ की जानिब से आप सबके लिए ये ट्रैक।

वेलकम बैक गैंग, ये सुना हमारे गुफरान भाई आए हुए हैं और भरपूर तरीके से जो है ना शरारतें कर रहे हैं इस वक्त। और स्मार्ट अमीर ने कहा नाइस शो एंड प्लेलिस्ट, थैंक यू वेरी मच। और जनाब अब आप लोगों से जो है वो साइन आउट का वक्त हो गया है और हमारी प्यारी सी बहन अदीला जो है उनकी जानिब से भी ट्रैक डेडिकेट करना है और वो मैं करूंगा। अदीला लास्ट ट्रैक आप वाला ही है और इनकी जानिब से इनकी रूह मन को डेडिकेट करेंगे। और क्योंकि स्लो ट्रैक चल रहा था सो दैट्स व्हाई, मतलब मेलो किस्म का ये तो खैर थोड़ा सा दुखी वाला था लेकिन हम दुखी वाला नहीं चलाएंगे, हम मेलो से ट्रैक चलाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद भी आएंगे। 90s के बड़े अच्छे अच्छे ट्रैक जो है वो मेरे शो के बाद अगर कोई सुनना चाहे, 1990 के ट्रैक्स जिनके पसंदीदा हों तो उनको ये कहूंगा कि अगर वो जाग रहे हों गलती से तो वो बाद में भी सुन सकते हैं। अच्छा जनाब अब आप लोगों से मुलाकात जो है वो इंशाल्लाह होगी एतवार को। एतवार को अब आपसे मुलाकात होगी जनाब दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और लास्ट ट्रैक अदीला की जानिब से उनकी रूह मन को डेडिकेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिबिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।